0: प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 प्वाइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है।

0: मैं दिल से प्रिय रहा हूँ, लोग मुझे चाहते थे।
1: यानी कि आप लोगों का हर संभव मदद करते थे, इस वजह से लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, दिल से आपसे जुड़े रहते।
0: जी हाँ बिल्कुल, मैं जो है यथाशक्त मदद करता था।
1: तो आप वरिष्ठ सहायक के पद से अवकाश प्राप्त हैं, तो क्या शुरू से ही इस जॉब में जाने का आपका मन था या कुछ और करने की ख्वाहिश थी, बताइए।
0: तो सही बात तो ये है कि मैं इस जॉब में जाने का मेरा कोई मन ही नहीं था, लेकिन मेरा मन जो है भारतीय वायुसेना में जाने का था, आर्मी में जाने का था, लेकिन दुर्भाग्यवश खेलते समय मेरा हाथ टूट गया और जहाँ से टूटा वहाँ गांठ बन गई।
1: अच्छा, यानी कि आपका हाथ टूट गया और हाथ जब आपका जुड़ा यानी हाथ ठीक हुआ तो उसमें गांठें पड़ गई,
0: जिससे जो है विवश होकर इस मतलब वरिष्ठ सहायकी की ओर मुझे आना पड़ा।
1: यदि आपके कहने का मतलब है कि आपके हाथ में गांठ पड़ जाने की वजह से आप वायुसेना में जाना चाहते थे और आप वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर सकते थे, आप अयोग्य हो गए उस
0: अयोग्य हो गए हाँ बिल्कुल अयोग्य हो गए
1: जी, वो अहर्ता नहीं पूरा कर सकते थे, इसलिए आप वायुसेना में जाने की आपकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। आप नौकरी करते हुए घर परिवार संभालते हुए कैसे आपने बताया कि आप हर संभव लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे, घर परिवार मित्र रिश्तेदार पड़ोसी सबके लिए आप तत्पर रहते थे, तो आप इतना सब कुछ करते हुए कैसे मैनेज करते थे, कैसे इतने सारा सोशल वर्क कर पाते थे, बताइए।
0: असल में दिल में अगर हौसला हो तो सभी कार्य करने में एक अलग प्रकार से आनंद की अनुभूति मिलती थी, और मैं मेहनत से या किसी के दुख में सम्मिलित होने से कभी हिचक नहीं करता था।
1: लोगों की भलाई करके सहयोग करके आपको एक आनंद का एहसास होता था।
0: आनंद का एहसास होता था जो जिसका लाभ मुझे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता था, मैं किसी से कोई उम्मीद लेकर किसी का मदद नहीं करता था।
1: और ये तो कहा ही जाता है कि जब किसी का भलाई उपकार मदद निस्वार्थ भाव से करो तो उस व्यक्ति के लिए ईश्वर स्वयं खड़े हो जाते हैं, ऐसा आपको अनुभव होता था कि आपकी मदद के लिए भगवान खुद खड़े हो जाते थे। सर आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की?
0: हमारी शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा तो अपने गांव से ही हुई
1: जी, गांव के विद्यालय से हुई।
0: उसके पश्चात जो है हम जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में चले गए पढ़ने के लिए, और गांधी इंटर कॉलेज व किसान डिग्री कॉलेज से पढ़कर राजकीय सेवा में चला आया
1: जी। यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहराइच जिला में हुई और उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई खत्म करके राजकीय सेवा
0: में आ गए। खेलना पढ़ना खाना चिंता मुक्त बचपना बड़ा ही अच्छा लगा हमें, कोई चिंता नहीं रहती थी, पढ़ना और फिर खेलना कूदना कोई चिंता नहीं, आए खाना खाए फिर चल दिए, इस तरीके से जीवन यापन चल रहा था उस समय और बड़ा ही अच्छा लगता था
1: जी। आपके कहने का मतलब है कि जब आप बच्चे थे तो उस समय विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद या स्कूल से आने के बाद बच्चों को काफी समय मिलता था खेलने के लिए।
0: उस समय जो बहुत ही वैसे लोग होते थे जो उच्च तबके के, उनके पास रेडियो होता था, नहीं तो किसी के पास कोई मनोरंजन के लिए खेल कूद के अलावा और कोई साधन नहीं था। आम तरीके से लोग जो है खेल कूद में ही जो है खाली समय लगाते थे।
1: यानी कि उस समय के जो बच्चे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय के बच्चों के पास टीवी मोबाइल लैपटॉप ये सब नहीं था, उनका सारा पठन पाठन के बाद सारा समय खेल पे बीतता था।
0: खेल पढ़ना
1: जी। आजकल के बच्चे तो इंडोर गेम खेलते हैं, टीवी मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप, बहुत सारे इंटरटेनमेंट के साधन हो गए हैं। उस समय आप लोग फील्ड में जाके खूब भरपेट खेलते थे, जितना मर्जी करता था। आप ये बताइए कि खेल कूद में आपकी रुचि थी और कौन से खेल खेलना आप पसंद करते थे, क्या क्या खेलते थे, बताइए जरा।
0: खेल कूद में मेरी रुचि थी और खेलना दिनचर्या का हिस्सा था, कबड्डी, दौड़, लंबी कूद, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, बैडमिंटन, ये सब खेल बहुत ही मेरे प्रिय थे और इन खेलों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से खेलता था। लोग मुझे बुलाते थे, अगर मैं नहीं पहुंच पाता था, रुका रहता था।

0: तक कि भाई उनको बुलाओ अपने साथियों के बीच में।
1: कि जब आप एक विद्यार्थी जीवन में थे और जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो आप खेल बहुत ही दिल से खेलते थे, एक आपके साथी आपके बिना खेल खेलते ही नहीं थे।
0: नहीं थे। एक इसमें एक दिलचस्प बात यह है, बहराइच में मैं पढ़ रहा था और वहाँ एक बहराइच के किनारे से नदी गई है यमुना जी, तो वहाँ घाट पर नहाने के लिए हम गए तो एक सौ का टिक्की जो होता है वो नदी बरसात का सीजन था खूब भरी हुई थी और उससे वो आ रही थी और मैं जो है उस नदी में कूद करके तैरते हुए गया और हाथ से उस टिक्की को घुमा दिया और फिर लौट आया। यानी हमको डर भी नहीं लगता था, तैरने में वो बहुत ही आनंद आता था।
1: यानी कि आप एक बहुत अच्छे तैराक थे और आपको अपनी तैराकी पे इतनी पकड़ थी, आप चाहे जितनी भरी हुई नदी हो विपरीत लहर हो उसमें आप बहुत अच्छा तैर लेते थे।
0: हाँ बहुत अच्छा। हाँ
1: खेल कूद में आपकी बहुत ज्यादा रुचि थी और आपने अपने विद्यार्थी जीवन में बचपन में बहुत खेला भी।
0: हाँ खूब खेला।
1: कभी खेल कूद के लिए मारपीट पड़ी पिताजी से?
0: खेल कूद के लिए मारपीट नहीं पड़ी, बस ये है एक बार मारपीट पड़ी कि हमको जो है एक मास्टर साहब के यहाँ भेज रहे थे पढ़ने के लिए कि वहाँ जाओ और मैं रास्ते में खेलने लगता था और टाइम बिता कर चला आता था, पूछते थे तो बता देता था कि मैं जो है पढ़ाया हूँ। एक दिन मास्टर साहब से उनकी मुलाकात हो गई तो उन्होंने बता दिया कि वो लड़का नहीं आ रहा है, तो इससे वो हमारे ऊपर दो एक झापड़ लगा दिए। उसके बाद से जो है ऐसी गलती मैंने नहीं की।
1: हाँ यानी कि आपके पिताजी आपको पढ़ने के लिए ट्यूशन पढ़ने के लिए तो आप ट्यूशन जाने के बजाय खेल में लग जाते थे। मास्टर जी ने कह दिया पिताजी से तो आपकी चोरी पकड़ी गई और आपकी पिटाई हुई।
0: हाँ पिटाई हुई।
1: पिताजी तो खैर अच्छा किए ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए। इंटरटेनमेंट के लिए अभी आप क्या करती हैं? फिल्में वगैरह देखते हैं, रेडियो सुनते हैं?
0: हम इंटरटेनमेंट के लिए न्यूज चैनल से न्यूज सुनकर मनोरंजन लेते हैं। इस उम्र में फिल्म देखने की इच्छा नहीं होती, पहले देखता था और तब के हीरो हीरोइन का जो रोल होता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय के हीरो हीरोइन में ये राजकुमार और एक राजेश खन्ना, रेखा मालनी जी, एक और हीरोइन थी दुश्मन की मुमताज, ये सब हमको मतलब काफी अच्छे लगते थे। इनकी इनका रोल जो होता था बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा जो है गायकी में लता जी, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार, इन लोगों की गायकी हमें बहुत अच्छा लगता था।
1: आइए श्रोताओं सर के पसंद का सुनते हैं ये गाना।

0: यादें हैं या कुछ पाने का सपना या कुछ टूटने का गम, ऐसा कुछ आपका अनुभव है तो हमें बताइए।
1: उम्र के इस पड़ाव पर नाना प्रकार के रोगों के रहते हुए

0: अब छल्ला डालना पड़ेगा वाल में। तो मैंने डॉक्टर से साफ साफ कहा मेरे जो भी जिम्मेदारियां थी वो सारी जिम्मेदारियां मैं निपटा चुका हूँ, डॉक्टर साहब इसकी क्या आवश्यकता है, जब तक चल रहा हूँ चलूंगा, नहीं चल पाऊंगा नहीं सही। तो डॉक्टर साहब ने कहा 20 साल उम्र बढ़ जाएगी। मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारियां सब पूर्ण हो चुकी हैं, मेरे लड़के बच्चे सब शादीशुदा हैं, अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये मेरे हिम्मत की बात थी, मैं तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन ये हुआ कि नहीं ये काम कराओ, छल्ला डलवा लो। तो हम कहे ठीक है डलवा लेंगे, उसमें क्या, वैसे हम अपने जीवन में जो है जो हमें करना था वो सब कर चुके हैं, हमें मरने का कोई डर नहीं था कि हम मर जाएंगे। इसीलिए जो है उम्र के इस पड़ाव पर बीमारी होते हुए भी ईश्वर ने जो दिया है मैं उससे खुश रहता हूँ और जो दे रहा है उससे संतुष्ट हूँ।
1: बहुत बड़ी बात कही आपने। और अगर इन बातों को या ऐसा हर कोई जो लोग हैं हमारे समाज में बुजुर्ग और इस उम्र में पहुंच चुके हैं, अगर इस सोच से जिंदगी को जिएंगे तो काफी जिंदा दिली से अपने जीवन को निकालेंगे।
0: हाँ बिल्कुल
1: सर, इस उम्र में स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, दिनचर्या क्या है?
0: पहले तो हम काफी मतलब मिर्च मसाला तेल का यूज करते थे, खाते थे, मीट मछली भी खाते थे, लेकिन अब इस उम्र में थोड़ा टहलना और योगा के साथ साथ खान पान में पहले की अपेक्षा कम चिकनाई वाला लेता हूँ, फल फ्रूट भी लेता हूँ।
1: जी, यानी कि आप फल फ्रूट और उसके साथ साथ हल्का और सुपाच्य भोजन करते हैं?
0: हाँ सुपाच्य भोजन करते हैं, और ये जो मीट मछली वगैरह था ये सब छोड़ दिया, जिससे मैं फिट भी रहता हूँ।
1: मतलब जो डॉक्टर आपको हिदायत दिए होंगे कि इतना योगा या इतना ही करिए, क्योंकि आप हृदय के रोगी हैं, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार सब कुछ करते
0: हैं? हाँ, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार
1: जी।
0: उन्होंने ये भी कह दिया कि बाहर टहलने में अगर आपको दिक्कत होती तो घर के अंदर टहलें, कोई जरूरी नहीं कि बाहर ही टहलें।
1: और पूजा पाठ अध्यात्म में रुचि है या नहीं?
0: हाँ बिल्कुल रुचि है
1: जी,
0: मैं नियमित लगभग 99%
1: जी
0: प्रक्रिया के बाद स्नान, तत्पश्चात कुछ मतलब हाथ जोड़कर भगवान के सामने उनको याद करता हूँ, जो अरुचि से नहीं हो सकता, कुछ बात ऐसी हो गई, बीमार हुआ या कोई चीज कुछ छोड़ दिया जाए, तो मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूँ, उनको याद करता हूँ। धन्यवाद
2: सर, आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपने अपने बारे में हमसे बहुत सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए हमारी तरफ से और सभी सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, पुनर्नवा कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे अवकाश प्राप्त वरिष्ठ सहायक श्री जय बहादुर सिंह जी से। साथियों, पुनर्नवा कार्यक्रम का आज का अंक यहीं समाप्त होता है, किसी सम्मानीय वरिष्ठ मेहमान के साथ अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी रेडियो साथी विनीता सिंह को दीजिए अनुमति। साथियों नमस्कार, स्वर एवं संकलन विनीता सिंह, प्रस्तुत करता संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम पुनर्नवा। कार्यक्रम आकाशवाणी सासाराम से प्रसारित किया गया।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। इसमें हम आपको सुना रहे हैं भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत। आरंभ में लीजिए सुनिए शारदा सिन्हा के स्वर में ये विवाह गीत।

लोक माधुरी कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं शारदा सिन्हा के ही स्वर में एक किसानी गीत, और इसमें एक किसान की तुलना सैनिक से की गई है। आइए सुनते हैं।

शारदा सिन्हा के गाए इस किसानी गीत के साथ ही लोकमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम रसधार के अंतर्गत भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं तनु प्रियंका के स्वर में ये निर्गुण भजन।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन, इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

जयवालिया की आवाज़ में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज़ में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही की ही आवाज़ है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज़ में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन रख सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज़, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा, इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें, शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगथरिया और श्रेय घोषाल की आवाज़ें, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके

0: साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनकी ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। तो मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज़ से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: रामलखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को। उनके जन्मदिन के मौके पर सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज़ में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से, मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनहर उदास के आवाज़ से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मनहर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम, और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में हैं। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जांबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाज़ें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन अरदास कंचन और आनंद की आवाज़ में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत, इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहां, जवाब महका, गाता झूमती, सपना रचना, जाने कहानी, सहारा बेसहारा, जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनके जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे कौर साथी कह रहे कि कुछ शब्द हैं जिंदगी पहेली कोई समझ सवाल जवाब ख्याल जीना सहारा अनजानी बहती झूमती गाती जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सी कॉमन गाने बचते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है, तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं करी। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हो, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता भाई। इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है जिंदगी पहेली सवाल जवाब मुश्किल ख्याल महका मन नदी धारा उलझन गाती झूमती रचना या रचती अफसाने हकीकत सपना कहानी अनजानी जानी पहचानी सहारा बेसहारा जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उठा लिए हैं, तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित

ये विचार भी हमारे साथी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज की भारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। क्यों बच्चों, ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
1: क्या कहा?

0: हो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली, करेक्ट?
1: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: अच्छा, ये भी गलत?
2: जी हाँ।

0: सब जानो इस दुनिया का हाल, अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट, किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आप को लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो, हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहती हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ

सिखा जाते हैं और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ न कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदन लाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बनकर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे सपने दिवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अतः चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। ये उन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुने तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं? वही हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहां उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही है अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है, और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में। तो हम उन्हें बता दें, जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोवर 100K लिखे हैं, यानी 1,00,000 फॉलोवर हैं, 1,00,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती है वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती है। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर, नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियां चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला, एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती है कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किनकी आवाजें हैं इस गीत में।

0: है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा

0: मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहां, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे बताया। हमारी एक और साथी कहती है कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम, बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खासतौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। भाई, ये जो एक भय है मन में वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: तेरे को कैसे मालूम था बड़ा कम पड़ जाएगा यार।
1: अरे सीधी बात है ना यार मोनू, हर गाने के फिनिश में हसीना मान जाती है यार।
2: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ क्षणों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई है। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वहीं छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है। इसके साथ ही पांचवें वेतनमान वाले कर्मियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 474 से बढ़ाकर 483% कर दिया गया है। प्रदेश की सरकार ने किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत महिलाओं समेत अन्य वर्गों को डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेशवासियों से ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। श्री चौधरी ने कहा कि ऊर्जा संकट को देखते हुए नागरिकों को ईंधन बचत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इसके अधिक इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने कारकेड में वाहनों की संख्या न्यूनतम रखने का निर्णय लिया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सभी राजस्व कर्मचारी अपने अपने हलके में सप्ताह के 5 दिन कार्य करेंगे। श्री जायसवाल ने अंचलाधिकारियों को

0: निर्देश में कहा है कि प्रतिदिन कार्यालय में होने वाली बैठक को समाप्त कर राजस्व कर्मचारियों की अपने हलके में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि केवल शनिवार को राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय में बैठक के में शामिल होंगे, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके अंतर्गत पहले चरण में मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले 7 मई से 21 मई तक स्वगणना की प्रक्रिया की गई थी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि मकान सूचीकरण के तहत प्रगणक स्वगणना के दौरान दर्ज गलत जानकारी को संशोधित कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस बीच साइबर फ्रॉड को लेकर भी सतर्क रहने के लिए कहा है। राजधानी पटना, अररिया और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में कल ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैक आउट किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून का आगमन निर्धारित समय से पहले होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी की सदारत में हुई पहली काबीना की मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 7वें शरह तनख्वाह वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वहीं 6ठे शरह तनख्वाह वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है। इसके साथ ही 5वें शरह तनख्वाह वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 474 से बढ़ाकर 483% कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन मरकजी वजारत दाखिला को मुफ्त मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। आला तालीम को फरोग देने के लिए रियासत के कॉलेजों में 132 नए ओहदों को मंजूरी भी मिली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी देने का मंसूबा बनाया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी पॉलिसी 2023 के तहत खवातीन समेत दीगर तबकों को DBT के जरिए हौसला अफजा रकम दी जाएगी। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने रियासत के बाशिंदों से ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही गाड़ियों का इस्तेमाल करने की अपील की है। जनाब चौधरी ने कहा कि तवानाई बहरान को देखते हुए शहरियों को ईंधन की बचत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद और उसके ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया है। वज़ीर-आला ने अपने कारकेट में गाड़ियों की तादाद कम से कम रखने का फैसला लिया है। वजीर इस्लाहात एराजी व महसूलात दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सभी महसूलात मुलाजमीन अपने अपने हलके में हफ्ता

0: हफ्ते 5 दिन काम करेंगे। जनाब जायसवाल ने सर्किल अफसरान को जारी हिदायत में कहा है कि रोजाना दफ्तर में होने वाली मीटिंग को खत्म करके महसूलात मुलाजमीन अपने हल्के में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ शनिचर को महसूलात मुलाजमीन सर्किल दफ्तर की मीटिंग में शामिल होंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन के जरिए मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। मर्दमशुमारी 2027 का पहला मरहला 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके तहत पहले मरहला में मकान की फहरिस्त साजी का काम किया जा रहा है। इससे कबल 7 मई से 21 मई तक खुदशुमारी का अमल किया गया था। चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर न्यूज डायरेक्टर रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से खसूसी बातचीत में बताया कि मकान फहरिस्त साजी के तहत शुमार कुनिंदगान खुदशुमारी के दौरान दर्ज गलत मालूमात को दुरुस्त कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस बीच साइबर फ्रॉड को लेकर होशियार रहने के लिए कहा है। राजधानी पटना, अररिया और कटिहार समेत रियासत के 6 जिलों में कल ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का इनाकाद किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक कबल से तयशुदा शहरी तहफ्फुज कोशिशों के तहत ब्लैक आउट किया जाएगा। पटना के जिला मजिस्ट्रेट त्यागराजन SM ने बताया कि इस दौरान इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर सभी प्राइवेट लाइटें बंद कर दी जाएंगी। जिला मजिस्ट्रेट ने आवाम से अपने घर, दुकान और सनती इदारों की सभी लाइटें भी बंद रखने की अपील की है। महकमे मौसमियात ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा समेत कई अजला में बारिश और बिजली गिरने के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गर्द आलूद आंधी चलने की भी तंबीह जारी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल मानसून की आमद मुकर्रा वक्त से कबल होने का इम्कान है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक हवलदार इंस्ट्रक्टर के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

0: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9175 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.crpf.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC ग्रेड सी और डी के लिए स्टेनोग्राफर के कुल 731 पदों भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु ग्रुप डी के लिए 27 वर्ष एवं ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब दोपहर समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
2: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में NDA की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर NDA में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित

0: सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
3: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।

डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रूपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रूपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24

0: अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर।

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार, क्या हालचाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं इस सखी सहेली मंच पर। और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती हैं है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, बताया भी जाएगा,
0: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है
1: कि दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
0: बिल्कुल।
1: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था।
0: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
1: एक्सचेंज कर लेते, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ ना।
0: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय
1: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले, तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोले दाबेली बाद में खिला दूंगी।
0: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
0: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता है।
1: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
0: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
1: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
0: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
1: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है
0: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, क्यों मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से इतने सुंदर
1: से आप मेंटेन है ना
0: ये तो वही तो बात है,
1: इसमें हमें संतुलन रखना है ना,
0: पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
1: बिल्कुल आनंद है,
0: संतुलन जरूरी है,
1: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
0: जी तो सुनते हैं गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: तो सुनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियां, जिन्हें पश्मीना साड़ियां भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना

0: इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियां आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
0: कितनी
1: वो
0: पतली होती होंगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती है। और कश्मीरी साड़ियां कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियां हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है, और कश्मीरी साड़ियां खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती है, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और टिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियां अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियां आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियां चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई, डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियां ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियां कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियां उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियां किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियां हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियां, ये वाली पश्मीना की साड़ियां पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
0: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है, जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियां कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियां हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है, और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की सकती, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध है, और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है।

0: और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ।
1: हाँ।
0: साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहां की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर-भर के कमेंट्स लिखे हैं,
0: भर-भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। और यही कारण कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत स्वस्थ रहते थे, और काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग समझ लो घर में चक्की भी चलना है तो गेहूं भी पछोरना है,
1: पानी भरना है, कुएं से पानी निकालना है, कितना सारे काम,
0: बहुत सारे काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो गई, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खाके यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खाके ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे भोजन में तो इतनी आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं, अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाए, जंक फूड पर जाए, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी ये काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है।

0: मंजरी थी इस गाने में है ना,
1: जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती है।
0: तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में न जाने खाने को मिले या न मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
1: बहुत सारे हमारे साथी,
0: अच्छा एक साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
1: और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल

0: पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या
0: बात है, बहुत सुंदर बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी।
0: देखिए, खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी। कि ऐसा है? नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता है,
1: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही, कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी है। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
0: वैसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
1: हाँ, वो इजिली से आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। यह सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है, मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ, ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना, जब तक

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्म, माना कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो एक दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा

0: कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है ना,
0: इसमें मजा आता है जिसको लगा रहा है मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: और अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, तो वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। और सचमुच मंजरी आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, न कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक
0: दिन। क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं। तो उससे पहले गाना सुनिए, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता न होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिला दें, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना, और उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है। इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट

0: मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात
0: और
1: है?
0: ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए। हाँ,
1: है बहुत हमें खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ इन आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं
1: अच्छी, सुंदर बताई।
0: और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं,
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली या डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है। और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अब गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है, और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज

0: बनाते भी नहीं है, वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दाबेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं। इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
0: हमारे देश बार बार जाने को जी करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है। तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
0: और खूब खाइए, और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा।
0: और आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंत्री वर्मा का
0: नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा

0: है कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल। अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो। अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे।
0: जी जी।
1: उनकी आवाज सुना, आम अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था।
0: जी जी।
1: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये, कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबार का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या।
0: जी।
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
0: जी,
1: اور نہ صرف آؤں گا

0: की हेड करेंगे,
1: उसका कार्यक्रम का मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
0: वाह वाह वाह,
1: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
0: क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
1: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
1: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
0: गंगा प्रसाद जी,
1: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
0: जी,
1: और
0: जी,
1: कर
0: जी।
1: रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
0: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
1: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
0: हम यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
1: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
0: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है, तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
1: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसडी जा चुके थे।
0: ओके,
1: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
0: जी।
1: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआत की दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
0: क्या बात है,
1: जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम

0: मिला जिसके हकदार थे वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको?
0: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा,
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: है ना, ये गाना सुन,
0: मेरा पसंदीदा गाना है
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज

0: कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है।
1: बिल्कुल
0: है ना, उसने 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे और फिल्मों का तो खैर दोहरिया लगता, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था
1: जी, ये हुआ है लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
0: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
1: वाह वाह,
0: और कई फिल्में थी और लंबी लंबी लाइनें और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्म गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
1: जी,
0: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
1: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
0: गाना चलता नहीं था
1: जी,
0: मैं गाता रहता,
1: खुद गाते थे
0: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
1: जी,
0: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसपे धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वो एक अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका।
0: हाँ, मेरे कारण गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह
1: जी। रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
1: जी,
0: एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था, हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
1: जी,
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो, उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब आज इस घर में घुस गए कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं,
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना। तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया,
1: गजब।
0: तो एक नाटक था श्याम फड़के का, कॉमेडी, काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी, तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविन्द्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
0: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
1: अच्छा,
0: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
1: उस दौर में जब आप,
0: तो वो तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
1: जी,
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
1: बिल्कुल।
0: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी जी, बिल्कुल,
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही, तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे, उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जैसे नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और इसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या 1-1 घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे, मतलब उसमें

0: लाल शर्मा आपके नाम सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में
1: आज भी हवा महल में, हाँ, उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी,
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
1: जी,
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
1: अच्छा।
0: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
1: जी,
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ, 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
1: तो वहां तो पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे,
1: हाँ,
0: हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी,
1: मतलब जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: 1 साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, सब
1: बिल्कुल
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जैसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते, हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें, हाँ, पढ़वाया जाता
0: जी, और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे,
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: मिला। क्या बात है, क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई दरदर
1: जी,
0: तरन्नुम में सुना हूँ।
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: और ये नवगीत का शुरू हुआ था तो ये अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं से,
1: हाफती हवाओं से क्या बात है,
0: बात

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं
0: जी,
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में,
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो। और हमारा संवाद माँ से होता था
0: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटी है कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी।
1: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार है। पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खान,
0: बड़ा
1: कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठे
0: सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते हैं सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को तंग करना या मस्ती करना
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत मेरे पास आती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
0: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जाते घरेलू नाम,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
0: जी,
1: तो वो छोटू की शिकायत जो
0: रोज आ रही है,
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
0: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात। हाँ। पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं
0: उसका जिक्र ना ही करे था।
1: तो ये एक अच्छा बचपन बीता, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र

0: अरे तो
1: घर में वो पारिवारिक कृष्ण के पिता नहीं थे वो,
0: हाँ वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र भज, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए। हाँ। मतलब बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
0: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है,
0: बिल्कुल
1: उनकी कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ।
0: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एकता बचपन,
1: एकता बचपन,
0: क्योंकि ये जो बचपन के जो दिन है उनके उनके नाम ये गाना है।
1: जी जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी,
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ये नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों का वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें सारे अखबार आते थे।

0: मतलब अखबार तो थे ही थे,
1: पत्रिकाएं भी,
0: पत्रिकाएं भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
1: जी जी।
0: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे। बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
1: सारी बात
0: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजाज साहब, तो ये सब सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैं

0: दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
1: सारी बात कह
0: सारी बात कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ की हुई है,
0: वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल। हाँ, ये मुझे नहीं पता था। ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
0: नहीं यूनुस, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
1: जी।
0: गजल की विधा को मैंने
1: अपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है।
0: तो खुद
1: मुश्किल भी है।
0: हाँ,
1: मुश्किल भी है,
0: मुश्किल भी है, तो उसको निभा ले जाना। और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है, बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन अलग है।
0: जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत।
0: यहाँ हर शख्स

0: बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर।
0: ये बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला
1: जी।
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत हो गया अब नहीं, अब नहीं
1: जी,
0: बहुत हो गया
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: ये आता है
1: सबके साथ, सबके साथ।
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता
1: जी,
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया। लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी की।
0: तो फिर हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह।
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे जान बचाते फिर रहते हम लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है।
1: वाह।
0: अमीर हो गरीब सबका, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी

0: इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है।
1: क्या बात है सर, हम बहुत खुश नसीब है कि विविध भारती के स्टूडियो में आप मौजूद हैं और आप से ये सुन रहे हैं।
0: मेरी खुशनसीबी, थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
1: जी जी,
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से होम सिक रहा, मतलब
1: जी जी बिल्कुल,
0: जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी। हाँ। बहुत अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
1: अच्छा खान पान था,
0: अच्छा खान पान था, अच्छा मौसम था
1: जी,
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, है ना, तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और वो सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापिस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह वाह।
0: मैं वहां फिर वापिस शायद 5 साल जयपुर रहा।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ,
1: है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: वहीं मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ
1: जी,
0: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है
1: जी।
0: तो और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: क्रीम, बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ
1: जी जी,
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था
1: जी जी जी,
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे, पला तो बड़ा सब था, जानते थे
0: और फिर उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
1: जी,
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था, सब कुछ, नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ, म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा है। उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के एक दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने कॉन्सर्ट होते थे
1: जी,
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना
1: जी जी,
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
1: वाह।
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों के द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह।
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब,
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, यूनुस, उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का
1: जी,
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में,
1: अरे बाप,
0: तो गाने संस्कृत में है
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मेरे कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुके इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है,
1: हाँ,
0: है ये,
1: तो बहुत मुश्किल काम है,
0: हम बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में।

0: जी
1: तो वो करते रहे और उनका बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहां पे। लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का उनके कंपोजिशंस में भी उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
0: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है।
1: तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
0: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
1: अभिज्ञान शाकुंतल
0: जी
1: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी थे कहना चाहिए।
0: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहाँ किए। इसके अलावा वहाँ विकल्प भी चलता रहा आपका? हाँ, नाट्य समूह
1: नहीं, विकल्प ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
0: हाँ,
1: विकल्प अपने रंग से चलता रहा, वो बीजे जो हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
0: जी, क्योंकि हाँ, रेडियो में आप पूरी तरह से अपने अपने अपने आप को झोंक दिया था।
1: मतलब बीजे जो हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
0: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
1: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का
0: जी जी,
1: जो गोगोल का उन्होंने
0: इंस्पेक्टर जनरल
1: नौटंकी की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया और वो भी किया।
0: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार।
1: हाँ, इसमें करनी ही वाला बात नहीं था,
0: जरूरत
1: से होता था
0: जी जी,
1: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि,
0: बिल्कुल
1: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि ये
0: मैं करता
1: हूं। इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है।
0: बिल्कुल,
1: आप तो उसी तरह से वो, चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
0: जी,
1: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है।
0: बिल्कुल होती है ना,
1: जानते होंगे, और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
0: जी जी।
1: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
0: जी जी,
1: तो उन्होंने मुझे छूट दी
0: कि नहीं नहीं आप करो।
1: हाँ, मतलब वरना ये होता नहीं है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो 4 कंपोजर हैं, आप स्टाफ में मौजूद हैं,
0: तो आप उनको,
1: और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
0: जी जी,
1: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
0: हाँ,
1: एक बार मैं बताऊं कि जब महादेवी वर्मा का गीत,
0: हाँ,
1: मैं नीर भरी दुख की बदली,
0: हाँ,
1: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना
0: जी,
1: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
0: जी,
1: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता,
0: हाँ,
1: किसी के लेके उसको कोई पढ़ता था और गीत होता था कोई गाता था,
0: वाह,
1: तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेवी वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
0: क्या बात है,
1: कबीर को कंपोज किया, स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
0: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है। हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
1: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
0: वाह वाह,
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा

रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: जटिल
1: शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वासमत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नी सामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के

0: हरी कृष्णा राव और भाजपा के एन नमसीवयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशनभोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 30,413 पर बंद हुआ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड, देविका सिहाद, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इधर आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलोर जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल रात तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। कार्यक्रम विवरण।

भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन 5:10 पर और घर आंगन का प्रसारण आप सुनेंगे 5:30 पर।

6 बजे प्रसारित गांव घर के अंतर्गत आप सुनेंगे भूपेंद्र नारायण सिंह की वार्ता, ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता तथा अलावा इसके बदलते मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा की भी चर्चा की जाएगी।

पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 7:30 पर और 8:45 पर सुनिएगा दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुर सौरभ आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे और 10 बजे सुनिएगा रसरंग।

अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ले रहे थे। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का प्रसारण घर आंगन।

मेरी सारी अजीज सखियों को अनीसा मानुसी का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम घर आंगन में। खुश आमदीद श्रोता सखियों, और आज हम अपनी बातचीत करेंगे एक ऐसी जो हमारे जिंदगी को बदल देती, यानी शिक्षा। शिक्षा पर हम बातें करेंगे। शिक्षा बेशक हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में, मजबूत बनाने और जिंदगी को रोशन करने वाला एक खूबसूरत हथियार है। शिक्षा है तो हम हर जंग को बखूबी समझ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तालीम ही इंसान की रूह को खूबसूरत बनाती है और इंसानियत का सबक सिखाती है। शिक्षा से अकल रोशन होती है और जहालत से अंधेरा। शिक्षा वो रोशनी है जो कभी भी खत्म नहीं होती। बहुत तरह की कमियां

नियां, कुरीतियां, रस्म रिवाज हमारे घर परिवार हमारे समाज में हर जगह शिक्षा की वजह से बदलाव आ रहे हैं और बहुत सारी बुराइयां खत्म हो रही हैं। हमें खुशी इस बात की है कि आज शिक्षा जुनून बन गया है, ज़रूरत बन गई है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारी बुराइयों को ख़त्म किया है। शिक्षित होने पर अपने हक को हम समझने लगते हैं, कानून को समझने लगते हैं और लड़ने की ताकत आ जाती है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े समझने लगते हैं। हमारे समाज में दहेज एक लानत है, एक ऐसी बुराई जिसने बहुत सारी बेटियों का घर वीरान कर दिया है, ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया है। रोती बिलकती ज़िंदगी जबरन गुजर रही है, लेकिन शिक्षा का दिया जब जगमगाया तो हमें अपनी हिफाजत के लिए हथियार नज़र आया, जिसने हमारी हिफाजत हुई और जिससे इस प्रथा का अंत हुआ। और हम सभी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करें, शिक्षित बनो और अपने आप को मजबूत करें ताकि किसी भी जुर्म से हम बच सकें। आइए हम सब वादा करें कि हम शिक्षा के दीप को और रोशन करेंगे जिससे दहेज प्रथा का अंत हो सके और हम सभी एक खुशहाल और इज्जत की ज़िंदगी जी सकें। हम अपने कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और सखियों, हम अपने कार्यक्रम में अक्सर कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आते हैं जिससे आपको खासा इजाफा हो सके। सखी, योजना बनाकर कोई भी काम करना अच्छा होता है, इसमें परेशानी कम होती है और कामयाबी ज्यादा मिलती है। हर काम से पहले हमें योजना बनाना चाहिए। अब हम जानकारी देने जा रहे हैं जिससे हमारे श्रोताओं को अच्छा खासा फायदा हो सकता है, और इसे आप ध्यान से सुनें और भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि ये योजना बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जी हाँ सखियों, इस योजना के अंतर्गत छोटे बिजनेसमैन को 50,000 से 20 लाख तक का बिना गारंटी वाला लोन प्रदान किया जाता है। ये योजना व्यापारियों, किसानों, किशोर और तरुण श्रेणियों के तहत लोन देती है। आवेदक जन सामर्थ या अन्य बैंक शाखाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये भारत का कोई भी नागरिक जो स्वच्छ दुकानदार यानी छोटे निर्माता हों, वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और सुनते एक और खूबसूरत संगीत।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: और सखियों, अब हम अपने कार्यक्रम में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ चुके हैं, क्योंकि जो हमारा शौक होता है यानी

हमारा हमारी सखियों का जो शौक होता है यानी खाना बनाना, रसोई घर, घर गृहस्थी, इन्हीं सब बातों पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रसोई घर में सखियों आजकल बाहर के बने खाने से सन्नाटा हो जा रहा है, तो इससे खूबसूरती को हमको बरकरार रखना चाहिए। सखियों आजकल बाहर के बने खाना खाने का एक फैशन सा हो गया है, लोग इसे एक स्टैंडर्ड समझने लगे हैं। पार्टी करना, होटलों में खाना खाना, ये दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आप इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन अपने हेल्थ का पहले ध्यान दें। अपने रसोई घर में प्रोबायोटिक भोजन तैयार करना और स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है, जो आंतों के स्वास्थ्य और पाचन में सुधार करते हैं। जैसे घर पर बनाया गया दही, यानी कि जब हम घर पे जो दही बनाते हैं बहनों, तो वो हमारे लिए बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है और उसकी शुद्धता की गारंटी हम खुद होते हैं। गर्मियों में छाछ बेहतरीन प्रोबायोटिक से भरपूर है, पाचन में ये मदद भी करता है। घर का बना अचार, अचार तो बहुत बाजारों में मिलते हैं, लेकिन जो हम घर में बनाते हैं उस अचार की क्या बात है, उसका मजा। और उसमें जो हम सबसे ज्यादा जो डालते हैं वो है हमारा प्यार। मिश्री सब्जी हो या आम का, बेहद फायदेमंद अचार होता है और खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है, पाचन में भी मदद करता है। आजकल इडली डोसा लोग बड़े शौक से खाते हैं और इसका बैटर भी हम घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाजार में तो इसका बैटर बड़ी आसानी से मिलता है, लेकिन शायद वो कब का है, कैसे बना हुआ है, इसकी परख हम नहीं कर सकते हैं और हो सकता है कि उसके खाने के बाद हमारे पेट खराब हो जाएं और जो मज़ा हम लेना चाह रहे हैं वो मज़ा नहीं ले सकें। तो चावल और दाल के मिश्रण को रात भर खमीर उठाकर बनाया गया ये पौष्टिक भोजन है। ये खाद्य पदार्थ पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। तो सखियों, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमने आपसे साझा की और उम्मीद करते हैं कि ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, जो हमारे हेल्थ में भी थोड़ा सा मदद करता है, क्योंकि गीत सुनने के बाद हम तरोताज़ा हो जाते हैं, हमारे अंदर थोड़ी बहुत तो एनर्जी ज़रूर ही आ जाती है और हम मुस्कुरा उठते हैं।

यूं लगे सखियों तेरा मुझसे जुदा होना, यूं लगे सखियों तेरा मुझसे जुदा होना, जिस तरह फूल से खुशबू का जुदा होना। अब सखियों, वक्त की इजाज़त बिल्कुल नहीं है कि हम और बातें करें आपसे। काश ये वक्त थोड़ा मेहरबान होता। कोई बात नहीं, हम इंतज़ार की लज्जत का मज़ा लेंगे, कुछ हंसी और खूबसूरत वक्त फिर गुजारेंगे आपके साथ। घर आंगन में होगी बहुत सारी खूबसूरत बातें, तब तक आप खुश रहें, अपनी ज़िंदगी और खूबसूरत बनाएं, हमारी यही दुआ है आप सभी के लिए। इन्हीं बातों के साथ आपकी रेडियो दोस्त अनीसा मानुसी चाहती है इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

से भी अपील कैल गेल बा। कारण कि ई जरूरी बा कि ईंधन के खपत के हमनी के कटौती कैल जाओ, जहां भी पेट्रोल आ डीजल के उपयोग कैल जरूरी होके वहीजे हमनी के ओकर उपयोग कैल जाओ। एकरा साथे साथे सार्वजनिक परिवहन पर ज्यादे निर्भर रह जाओ, निजी वाहन के उपयोग कम कैल जाओ। हो सके तब आपन जो निजी वाहन बा ओकरा के घरे रख दही, कारण कि ओकरा से अधिक ईंधन के खपत बा। अभी कोशिश करी कि स्वदेशी अपनाई, विदेशी मुद्रा बचावे के कोशिश करी, कारण कि अभी देश के जौन स्थिति बा ओमे हमनी के स्वदेशी अपनावे में ही भलाई बा। एकरा साथे साथे हमनी के कृषि आजीवन शैली में भी सुधार करे के पड़ी, जिसे कि खेती बाड़ी में हमनी के रासायनिक उर्वरक के जौन प्रयोग करी न जा ओकरा के हमनी के कम करे के चाही। प्राकृतिक खेती के हमनी के बढ़ावा देवे के चाही। अनावश्यक रूप से सोना जौन हमनी के खरीदी न जा उ हमनी के रोके के चाही अभी। विदेश के यात्रा कोई कैल चाहत होके तो ओकरा पर भी हमनी के रोक लगावे के चाही। डीजल पंप के जगह पर सौर ऊर्जा के उपयोग हमनी के ज्यादे करे के चाही। देखी श्रोता भाई, हमनी के कोशिश कैल जा कि ऊर्जा के हर रूप में बचत कैल जा। देखी ऊर्जा के बहुत सा स्रोत होला, जैसे कि प्राकृतिक स्रोत होला, कुछ कृत्रिम स्रोत होला। जैसे कि हमनी के कुछ ऊर्जा बचावे खातिर अपना घर से ही शुरू करे के चाहिए। कभी कभी देखे में आवेला कि हमनी के घर में कोई नीखे अनावश्यक रूप से पंखा चल रहा बा। कभी कभी इहो देखे में आवेला कि घर में बिजली बरता ओती घड़ी दिन बा आ बिजली के कोई जरूरत नीखे, आदमी बल्ब बरले छोड़ देवेलन। तो कोशिश करे के चाहिए कि हमनी के घर के जे भी गार्जियन बा उ अपना बच्चन के बार बार एह बात पर ध्यान देस कि देख अनावश्यक बिजली या पंखा जौन बा घर में ना जलावे के चाहिए। एकरा से का होला कि ऊर्जा के नजायज खपत होला। देखी कहल जाला कि बूंदे बूंदे तालाब भरेला। हमनी के हर घर में समझी कि यदि इतना बड़ा देश बा, यदि एक गो बल्ब बुता दिहल जाओ जमना के जरूरत ना होके, तो देश में समझी कि कितना बड़ा बिजली के बचत कैल जा सकेला। वही तरह से कभी कभी हमनी के सड़क पर जब यात्रा करी ना जा तो अपन वाहन लेके चलते जा, मान ली कि दुपहिया या चरपहिया वाहन से हमनी के चल रहा बन जा, तो कभी कभी यातायात के नियम खातिर जौन सिग्नल बनाओ रहेला ओकरा में लाल रहेला, बत्ती बरल बा, एकर मतलब कि हमनी के ओहिजा ठहरे के बा। ठहरल बन जा ई बात तो ठीक बा, लेकिन हमनी के मोटरसाइकिल या वाहन ओ समय चालू हालत में बा, मतलब ओकर इंजन चल रहल बा। एकर मतलब भेल कि हमनी के अनावश्यक रूप से ओ डीजल के बर्बाद कर रहल बन जा या पेट्रोल के बर्बाद कर रहल बन जा। तो एह तरह से हमनी के अपना जौन ऊर्जा के स्रोत बा, डीजल बा, पेट्रोल बा, एकरा के बचत करे के चाहिए। देखी मान ली कि इतना बड़ा हमनी के देश बा, यातायात के इतना वाहन बा, उहमें यदि एक मिनट भी हमनी के अपन गाड़ी के इंजन ठहराव पर जहां ठहरल बन जाए यदि ओकरा के बचा ले तनी जा, तो समझी कि देश में कईक लाख लीटर हमनी के पेट्रोल बचा लेनी जा एक मिनट में। आ यदि हमनी के ओह पर ध्यान नहीं खींचा देत तो अनावश्यक रूप से यदि हमनी के इंजन चालू बा आ सामने यातायात के जवन सिग्नल बा ऊ लाल बा, तो वो स्थिति में हमनी के अनावश्यक रूप से बर्बाद कर देनी जा। तो इस तरह से हमनी के अपन सोच में थोड़ा यह बात के डाले के चाहिए कि अनावश्यक हमनी के जवन भी ऊर्जा के स्रोत बा वो बिजली होके, डीजल पेट्रोल होके या सौर ऊर्जा के जौन भी होके, हमनी के ऊर्जा के बचत कैल जाओ, जवना से कि हमनी के कल आवे वाला जरूरत में ओकर जरूरी। कभी कभी होला कि जरूरी जरूरत बा उहमें हमनी के भी ऊर्जा नहीं है, जिससे कि मान ली कि कोई के ऑपरेशन करे के बा आ हमनी भी बिजली होते हरी कट जाओ, तो एक बहुत बड़ा खतरा हमनी के सामने आ जाए। तो यदि थोड़ा थोड़ा करके हमनी के यदि वही बिजली के बचैले रह जा तो आपात स्थिति जब आई ओती घड़ी हमनी के हेल्प मिल जाए, सहयोग मिल जाए। आ देखी ई जवन ऊर्जा होला ई राष्ट्रीय संपत्ति होला। ऐसा नहीं कि मान ली कि हम डीजल पेट्रोल या अन्य जवन भी बिजली के शुल्क दे रहल बानी तो उ हमार हो गेल, ई हो गेल उपयोग करे भर, लेकिन यदि ओकरा के रौरा बचाई
तो समझी कि एक तरह से देश के रउरा सहयोग कर रहल बानी, देश के विकास में मदद कर रहल बानी, तो आई हमनी के कोशिश कर जाओ कि ऊर्जा के संरक्षण करके, ऊर्जा के बचा के अपना देश के आगे बढ़ावे में हमनी के मिलजुल के सहभागिता कर जाओ, आगे बढ़ चढ़ के बढ़ल जाओ, ताकि हमनी के देश में ऊर्जा के स्रोत बना रहे। तो देखी हमनी के और चर्चा बाद में कल जी, एकरा पहले आई हमनी के कुछ मन मन साइन कर लिया, तो एकरा खातिर एगो लोक गीत सुनतन जा, जमुना के बोल बा कि सुतला में देखली सपलवा, एकर कलाकार बनी मंदाकिनी सिंह, आई हमनी के झूमर सुनल जाओ, एकरा बाद हमनी के बातचीत कल जाये।

0: देखी श्रोता भाई कितना निमन लोक गीत लागल है, एकदम मन मनसाइन हो गई। आ देखी हमनी के एकरा बाद ऊर्जे पर फिर बात कल जाय, कारण कि ऊर्जा के बहुत सा स्रोत होला प्राकृतिक कृत्रिम। तो एकरा पहले आई हमनी के थोड़ा संदेश सुन लिया, एकरा बाद हमनी के बातचीत कल जाय।
1: पहुँचे के सस्ता आ सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार,
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान,
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
0: देखी श्रोता भाई, चले के हमने के फिर ऊर्जा विषय पर, कारण कि आज के समय में ऊर्जा जौन संरक्षण बा आज के बचत के जरूरत बा हमनी के। देखी श्रोता भाई, ऊर्जा जवन बा हमनी के बहुत सा प्राकृतिक साधन बा ऊर्जा के, जैसे मान ली कि कोयला बा या तेल बा, तो जवन जमीन के नीचे से निकलेला, यदि एकरा के हमनी के बहुत ज्यादा उपयोग कर जाए तो एक दिन ही खत्म हो जाए, जवन की जरूरी जब जरूरत पड़ी वो समय हमनी के ना मिल पाई। तो हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि ऊर्जा के बचावल जाओ, ऊर्जा के बटोरल जाओ, जैसे कि हमनी के मानव निर्मित जौन स्रोत बा ऊर्जा के, बिजली बा जौन की कोयला पानी या पानी के जौन चक्का होला ओकरा के चला के बिजली पैदा कर जला, बैटरी बा एकरा से भी रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदल के एकर उपयोग कर जला। तो एक तरह से ऊर्जा जौन बा एकर उपयोग हमनी के आज के अपना जीवन में काफी मात्रा में कर रहल बन जा। तो एकर कैसे संरक्षण कर जाओ ई आज कितना जरूरी बा, एकरा खातिर आई हमनी के एगो वार्ता सुनतन जा। वार्ताकार बानी भूपेंद्र नारायण सिंह, ताई हमनी के पहले यहां से सुनल जाओ कि आज के समय में ऊर्जा संरक्षण कितना जरूरी बा।
3: ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि का मूल है, बगैर ऊर्जा के दुनिया की परिकल्पना ही बेमानी है। सृष्टि की रचना से लेकर आज तक जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू ऊर्जा पर ही आधारित हैं। ऊर्जा है तो जीवन है, ऊर्जा नहीं तो जीवन नहीं। जीवन के आरंभिक काल में काष्ठ ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत रहा और आज तक बना हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से लकड़ी को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने की परंपरा आज भी विश्व में सबसे अधिक प्रचलित है। विश्व के तमाम वन क्षेत्रों के आसपास से कोयले की निकासी होती है, जो एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा आदि आते हैं। इसके अलावे नैसर्गिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा व्यापक तौर पर उपलब्ध है, जिससे इस विज्ञान के युग में नित्य नए उपकरणों को संचालित किया जाने लगा है। विज्ञान जिस गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, उसका असर ऊर्जा की उपलब्धता पर भी सीधे पड़ रहा है। आज स्थिति उस ओर बढ़ रही है कि अगर प्रचलित पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जाओं में से कहीं भी कमी होती है, अर्थात उत्पादन और आपूर्ति के बीच खाई आती है, तो जनजीवन ठप हो जाता है। घर की रसोई से लेकर चांद पर यात्रा परंतु आज सीमित होती जा रही है। भारत जैसे विकासशील देश में आवश्यकता के अनुपात में ऊर्जा की उपलब्धता काफी कम है। आज ऊर्जा उत्पादन के मुख्य स्रोतों में

कोयला इसके अलावा वृद्धि हुई है। परमाणु ऊर्जा में भी भारत अपना कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि जितनी ऊर्जा की जरूरत देश में है उतनी ऊर्जा के उत्पादन से हम काफी दूर हैं। इसके बावजूद ऊर्जा की बर्बादी पर ध्यान न देना काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर्याप्त उल्लेखनीय है कि डेनमार्क विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 25% से ज्यादा विद्युत की आपूर्ति हवा से प्राप्त होती है। इसके लिए पवन चक्की से विद्युत उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत भी अब सक्रिय है और एक योजना के अनुसार आने वाले समय में 45,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल देश के तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी के समीप सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है, जहां से लगभग 380 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। हालांकि देश में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अकूत भंडार है, लेकिन उसका उत्पादन तकनीक विकसित नहीं हो पाया है और काफी हद तक आयातित ऊर्जा से ही संतोष करना पड़ता है। इस कारण आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन स्थिति यह है कि ऊर्जा का विकल्प केवल ऊर्जा ही है। भारत में जितनी ऊर्जा की उपलब्धता है वह आवश्यकता से काफी कम है। इसके बावजूद यहां ऊर्जा की बर्बादी पर काबू पाने के इंतजाम नहीं के बराबर है। घर हो या दफ्तर, कहीं भी ऊर्जा की बर्बादी प्रत्येक दिन देखने को मिलती है। घर से बाहर निकलते समय बत्तियां न बुझाना, पंखे चलते छोड़ जाना, यह आम बात है। दफ्तर बंद होने के समय भी वही आदतें दोहराई जाती हैं, जिससे प्रतिदिन सैकड़ों मेगावाट बर्बाद। सड़क पर चलते बगैर हरकतों का कितना बड़ा, अगर हम विद्युत अथवा ऊर्जा के उत्पादन अपनी रचना तो ऊर्जा को बेकाम के तौर पर नष्ट करने का अधिकार किसने दिया है? ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, इसे गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर प्रतिदिन हम 1 या 2 घंटे भी ऊर्जा की बचत करते हैं तो इतने बड़े देश में काफी ऊर्जा की बचत होती है। आज भारत जैसे देश विकसित और विकासशील देशों में ऊर्जा संरक्षण एक चुनौती है और आवश्यकता भी। आज की संरक्षित ऊर्जा हमें कल के विकास में सहायक होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊर्जा की जरूरतें दिनानुदिन बढ़ती जा रही हैं, उसे देखते हुए ऊर्जा का संरक्षण आज की आवश्यकता हो गई है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारत में ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए नए स्रोतों की खोज जारी है। साथ ही पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षेत्र के माध्यम से नए ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की दिशा में कारगर प्रयास जारी है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यकता से काफी कम है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ऊर्जा की खपत में तेजी से वृद्धि हो रही है, जबकि उस दर से उत्पादन नहीं हो रहा है। उत्पादन और खपत के इसी अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुके विकासशील एवं विकसित देशों को इस कारण भी ऊर्जा संकट का दंश झेलना पड़ रहा है। ऊर्जा संकट से उबरने के लिए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को लेकर कवायद तेज है। इस मामले में भारत को रूस एवं अमेरिका से काफी मदद मिल रही है।

0: के बावजूद ऊर्जा संकट से निपटने का सबसे आसान तरीका वर्तमान में ऊर्जा का संरक्षण ही है। इस परिस्थिति में प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य बनता है कि ऊर्जा के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई जाए, क्योंकि बगैर ऊर्जा के आज कुछ भी संभव नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना होगा कि ऊर्जा का यथासंभव संरक्षण किया जाए, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण आज की प्रमुख आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण में ही देश का विकास और भविष्य सन्निहित है।
1: देखी श्रोता भाई बहन लोग, कितना निमन ऊर्जा संरक्षण आवश्यक बा, यह विषय पर बात कैनी भूपेंद्र नारायण सिंह, आ इतना निमन बात कैला खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। देखी श्रोता भाई, अभी हमनी के जवन गांव घर में बानी जानू, कभी दिन में बहुत ज्यादे तेज धूप निकलता आ कभी रात में पानी हो जाता तो कभी रात में ठंडा लागे लागता। एह में होत का रहल बा कि जौन बदलत मौसम बा, एह में हमनी के कभी सर्दी हो जाता तो कभी बुखार हो जाता, तो हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि एह बदलत मौसम में अपना के निरोग रखल जाओ। कारण कि कहल गइल बा कि आप भला तो जग भला। देखी यदि रौरा घर के मुख्य आदमी बानी, कमाए वाला रौरे बानी, आ रौरे यदि निरोग ना रहब तो रौरा घर के आदमी के कैसे सेवा कर पाए या उनकर जरूरत के पूर्ति कैसे करो। ऐसे जरूरी बा कि हर कोई हमनी के पहले निरोग रहे के भी बारे में थोड़ा सोचल जा, आ निरोग रहे के कुछ तरीका बा ओकर पालन हमनी के कैल जा। कारण कि अभी देखे मौसम बदल रहल बा, यह बदलत मौसम में जैसे कि सर्दी भइल, कोई के बुखार लग जाता, तो एकरा खाती एकरा से बचे खाती हमने के बीमारी से खान पान में पौष्टिक चीज के प्रयोग हमने के ज्यादे करे के चाहिए आ पर्याप्त मात्रा में हमने के पानी पिए के चाहिए। एकरा साथे साथे सुबह शाम के तापमान में जौन बदलाव हो रहल बा ओकरा अनुसार हमने के कपड़ा के भी प्रयोग करे के चाहिए। आ इम्यूनिटी जौन बा हमने के ई बढ़ रहे एकरा खाती अदरक आ तुलसी के चाय के हमने के प्रयोग करे के चाहिए। आ बाहर के जौन हमने के आदत हो गइल बा बाहर के खाना खाए के, तेल में के खाना खाए के, एकरा से हमने के परहेज करे के चाहिए। ऐसे हमने के निरोग रह सके ना जा। आ एकरा साथे साथे हमने के रोज नियमित रूप से व्यायाम या एक्सरसाइज भी हमने के करे के चाहिए। एकरा में हमने के निरोग रहल जाओ एकरा खाती जरूरी बा कि खान पान में कुछ बदलाव कर लिया, जिससे बदलत मौसम में विटामिन सी से भरपूर फल होला, जैसे संतरा होला, नींबू होला, अदरक, पपीता आ हरा सब्जी के पर्याप्त मात्रा में हमने के प्रयोग करे के चाहिए। गिलोय आ तुलसी के सेवन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ावेला, ऐसे हमने के एकर भी प्रयोग करे के चाहिए। एकरा साथे साथे कभी कभी हाइड्रेशन हो जाला, पानी के कमी हो जाला शरीर में, तो प्यास ना लगला पर भी हमने के जौन ई बदलत गर्मी के मौसम बा एहमे पर्याप्त मात्रा में हमने के पानी पियत रहे के चाहिए। कोशिश करे के चाहिए कि गुनगुना पानी पियल जाओ आ पानी पी के यदि गला के खराश बा ऊ भी ठीक हो जाला आ सर्दी बुखार भी जौन लागे वाला रहेला ऊ भी ओकरा से ठीक होला। एकरा साथे साथे तापमान जौन बढ़ जाला या एकरा में बदलाव होला एकरा खाती हमने के हल्का जैकेट या साल के भी प्रयोग हमने के कर लेवे के चाहिए। एकरा साथे साथे देखी विशेष हमने के कोशिश ई करे के चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पर साफ सुथरा रहल जाओ, जिससे कि हाथ के साबुन से हर समय धोल जाओ, पानी के जौन बा साफ पानी के प्रयोग कर जाओ आ वायरल संक्रमण से हमने के बचल जाओ। एकरा साथे साथे देखी यदि हमने के ये जौन बदलत मौसम होला या कहीं कहीं पानी रुक जाला जौना से मच्छर पैदा होला सन, तो कोशिश करे के चाहिए कि अपना घर में जौन भी ठहरल पानी बा उ पानी के साफ कर दही आ सूतत खून मच्छरदानी अथवा शरीर में क्रीम लगा के सूती, जौना से कि बदलत मौसम में मच्छर के जौन प्रकोप बा कम होके आ मच्छर से बीमारी जौन होला डेंगू होला मलेरिया होला एकरा से हमने के अपन बचाव कल जा सके। एकरा साथे साथे देखी हमने के स्वस्थ रहे खाती जरूरी बा कि पर्याप्त मात्रा में हमने के नींद लिहल जाओ। रोज कम से कम 7 से 8 घंटा तक हमने के रात में भरपूर मात्रा में नींद लेवे के चाहिए आ एकरा साथे साथे सुबह में व्यायाम भी करे के चाहिए।

आ कौची हमनी के कुछ बा जवन की बीमारी करेला उ काम हमनी के ना करे के चाहिए। जैसे हमनी के कभी भी बासी खाना ना खाए चाहिए या खुला खाना जवन बा पहले से सुबह के धैल बा या खुला बा जवन पकड़ी मक्खी उखी बैठल बैसन उ खाना हमनी के कभी भी ना खाए के चाहिए। या कभी ये भी परहेज करे के चाहिए गर्मी के मौसम में कि अचानक कभी कभी आदमी क्या करलन कि धूप से अलन आ एसी में घुस गलन या एसी में बैठल बन एक बैग निकल के धूप में चल गलन तो एक से भी आदमी के तबियत खराब होके के संभावना बढ़ जला। इससे हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि एसी में यदि बानी तो ओकरा के संतुलन बनैला के बाद ही हम बाहर निकली। एक साथे साथे देखी निरोग रहे खातिर हमनी के ठंडा पानी जवन फ्रिज में रख के कुछ आदमी एकदम सोचलन कि बर्फ जमा के पीही तो एकरा से बहुत ठंडा पानी पिए से बचे के चाहिए। या कोल्ड ड्रिंक यदि अधिक मात्रा में ठंडा बा या ओकर सेवन करतनी तो ओकर सेवन करे से बचे के चाहिए। इस तरह से यदि सर्दी बुखार तेज हो गई होके या सर्दी बुखार के लक्षण दिखाई देत होके आ अधिक दिन से लगाता तो एकरा खातिर हमनी के अब अपना चाहिए कि नजदीक के जौन डॉक्टर बन उनका से सलाह लेके अपन इलाज करा जाओ। एकरा से हमनी के निरोग रह जी। देखी श्रोता भाई हमनी के अब चले के अपना खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी में मौसम पूर्वानुमान में ई बा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 13 से 17 मई के दौरान हमनी के जिला रोहतास में एक से दो स्थान पर गरज आ चमक के साथ आंधी आ बारिश हो सकेला। एकरा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा भी चल सकेला। मध्यम से हल्का बारिश भी होके के अनुमान बा। एकरा में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। एमे सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% आ दोपहर में 30 से 40% रहे के अनुमान बा। एमे 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वीय हवा भी चल सकेला। एकरा में हमनी के आगामी दिन वर्षा के संभावना के देखते हुए हमनी के खेत में कटल फसल होके तो ओकरा के सुरक्षित स्थान पर ढांक के रख देवे के चाहिए। आ फसल में सिंचाई के रोक देवे के चाहिए। आ खाद आ कीटनाशक के छिड़काव तब करे के चाहिए जबकि आसमान साफ होके। एकरा में यदि खड़ा फसल में सिंचाई स्थगित करी या खाद कीटनाशक के छिड़काव तब करी जबकि आसमान साफ होके। एकरा साथे साथे देखी एकरा में फसल संबंधी विशेष सलाह ई बा कि मूंग आ उड़द के फसल में रस चूसक कीट लागेल सन जौना के माहू कहल जाला आ हरा कुर्दा कहल जाला या सफेद मक्खी भी लागेली सन। एकरा बचाव करे खातिर हेतु मैलाथिन 50 EC के चाहे डाइमेथा 30 EC के 1 लीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के हमनी के फसल पर छिड़काव करे के चाहिए। इस तरह से देखी श्रोता भाई स्टूडियो के घड़ी और अधिक कुछ कहे के इजाजत निखे देत है ना। यह कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। यही के साथ अब समय खत्म होता चलत चलत सब श्रोता भाई बहन लोग के रजू भाई के तरफ से नमस्कार।

अभी आप ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण सुन रहे थे, गांव घर। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
2: श्रोताओं आइए सुन लेते हैं साजन चले ससुराल फिल्म का यह गीत शिवम भारती और रचना की आवाज में।

0: सांझ गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: नमस्कार, राजेश हूँ, कैसे हैं आप सब। आज बुधवार का दिन है और आज के दिन हम आप सबके लिए लेकर आते हैं पैरा मेडिकल है पारस, खास करके वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। हालांकि मैथ्स वालों का भी गुजारा होगा इसमें, क्योंकि हम बातें करते हैं पैरामेडिकल की, नर्सिंग की, इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, ढेर सारे हेल्थ सेक्टर की जो पढ़ाई लिखाई है ना, उसके विषय में इस कार्यक्रम में बातचीत करते हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पटना के बस स्टैंड रोड जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। अगर जो आप चाहें तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, खुद पेशे से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इन्हीं की देखरेख में ये संस्थान चलता है, इनसे बात कर सकते हैं। नंबर नोट करें 9155558888। हमने कहा 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233 ये नंबर है। युवा साथियों, अभी रिजल्ट्स आए हैं इंटरमीडिएट के और लगातार एडमिशन चलने का सिलसिला जारी है। अपनी मर्जी के कोर्स को चुना जा रहा है। हम आज की गेस्ट रश्मि देवी को बुलाएं, उससे पहले आपसे दो बातें ये करना चाहते हैं कि आप सजेशन सबसे लीजिए। माता पिता, प्रोफेशनल, बड़े भाई, छोटे भाई, पास पड़ोस, सारे लोगों से लीजिए, लेकिन कीजिए वही जो आपका दिल चाहे। हम सबसे पहले बुलाते हैं हमारे आज की गेस्ट रश्मि देवी को और रश्मि जी से कहते हैं कि आप अपने बारे में लोगों को खुद बताइए।
3: मेरा नाम रश्मि देवी है और मैं श्रीनाज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हूँ। मैं एमएससी फैकल्टी हूँ यहाँ की और एक्टिंग प्रिंसिपल हूँ करेंटली।
2: एक्टिंग प्रिंसिपल हैं, बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस में। रश्मि देवी जी, आपसे बातचीत करेंगे हम बीएससी नर्सिंग पर, है ना। बीएससी नर्सिंग के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को, क्योंकि इंटरमीडिएट के रिजल्ट आए हैं, बच्चे चुनना चाहते हैं करियर, एक ब्राइट करियर हो, जॉब ओरिएंटेड करियर हो, ये चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले बीएससी के बारे में पूरा बताइए।
3: तो हमारे नर्सिंग में एएनएम, जीएनएम और बीएससी तीन तरीके के कोर्स होते हैं। सो बीएससी एक डिग्री कोर्स है और मेरे हिसाब से आपको डिग्री कोर्स चॉइस करना चाहिए। अगर आपको इकोनॉमिकली आप ठीक हो, आपके पास इकोनॉमिकली मतलब पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको बीएससी नर्सिंग का डिग्री करना चाहिए। क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसपे आप डायरेक्ट आप तो एक तो डिग्री मिलेगा पहला चीज, और आप हेल्थ सेक्टर पे रहोगे। अगर आपको इंटरेस्ट है हेल्थ सेक्टर पे तो आप जरूर मतलब नॉर्मल बीएससी के अकॉर्डिंग आप बीएससी नर्सिंग कर सकती हो। और उसके अलावा बीएससी नर्सिंग करने से आपको ये भी प्रॉफिट होगा कि वो एक डिग्री कोर्स है, तो इसके बाद आपको फर्दर एजुकेशन के लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। मीन्स आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे फील्ड मतलब एजुकेशन के लिए खुले हुए रहेंगे। और वो चीज अगर जैसे आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो वो चीज आपको नहीं मिल पाएगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आप डिप्लोमा भी करेंगे तो भी आपको पहले ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा, तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर जा सकते हैं। तो एजुकेशन की दृष्टि से तो बीएससी नर्सिंग एक बेस्ट कोर्स है। और इसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग करके काफी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको
2: यहाँ एक बात हम पूछना चाहेंगे, हम सिलसिलेवार ढंग से आपसे सवाल पूछें जो बच्चे के दिमाग में एकदम पहुंच जाए। रश्मि, इसमें लड़के और लड़कियां बीएससी नर्सिंग में दोनों आ सकते हैं?
3: जी जी सर, लड़के और लड़कियां दोनों आ सकते हैं। दोनों को सर सेम अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप हेल्थ सेक्टर में अपना काम करके और कम्युनिटी को अच्छा से अच्छा सेवा दे सकते हैं।
2: कम्युनिटी को अच्छा से अच्छा सेवा दे सकते हैं।

0: कार्यक्रम चल रहा है, पैरामेडिकल है पारस, रश्मि देवी जो हैं वो हमारे साथ है, फैकल्टी हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में। अगर कोई सवाल हो तो 9155558888 या 9162413233 इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ रश्मि एक बात लोगों को बताइए, बच्चे अभी एकदम खुले मैदान में पहली बार आए हैं इंटरमीडिएट का रिजल्ट लेकर के, कितने साल का कोर्स है, कितने दिन का इंटर्न होता है, क्या डिप्लोमा में भी इंटर्न है या सीधे सीधे कोर्स है, क्या स्थिति है नर्सिंग में?
1: सर डिप्लोमा में भी इंटर्नशिप होता है
0: जी,
1: और हमारे बीएससी नर्सिंग में
0: कितने दिन का डिप्लोमा कोर्स है?
1: डिप्लोमा कोर्स सर एएनएम जैसे 2 साल का है, हाँ, और जीएनएम 3 साल और 6 महीने का इंटर्नशिप होता है,
0: हाँ,
1: और बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है और उसमें भी 6 महीने का इंटर्नशिप होता है,
0: हाँ,
1: तो ये एक बीएससी नर्सिंग एक एमबीबीएस के कोर्स के जस्ट नीचे, मतलब हेल्थ सेक्टर में एमबीबीएस के जस्ट बाद का कोर्स माना जाता है सर, नर्सिंग में सबसे बेस्ट कोर्स होता है, और इस मतलब बीएससी नर्सिंग करके आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत हो जाते हैं।
0: यानी डिप्लोमा 3.5 साल का होता है और डिग्री 4.5 साल का कोर्स है
1: जी सर।
0: अब आते हैं जब आप जॉब कर रही हैं कि जॉब में कहाँ कहाँ जा सकते हैं?
1: सर बीएससी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे खुल जाते हैं, जैसे हम लोग नर्सिंग में ही फंडामेंटल में ही हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है कि आप नर्सिंग मैनेजर बन सकते हैं, नर्सिंग काउंसलर बन सकते हैं, आप नर्सिंग आपके क्लिनिकल हेल्थ सेक्टर में आप काफी अच्छा वर्क कर सकते हैं, और आप एजुकेटर भी टीचर भी बन सकते हैं, और उसके अलावा आप रिसर्चर बन सकते हैं। जैसे कि अब मैंने मैनेजर बोला तो सर आप जैसे बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट हो गया है तो आपका एक डिग्री आपके हाथ में है, तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स करके आप फिर नर्सिंग मैनेजर का भी मतलब काम कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल में। वैसे ही काउंसलिंग का कोर्स, आप जैसे बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप काउंसलिंग, एक आज के डेट में एंजाइटी लोगों को बहुत होता है तो आप साइकोलॉजिकल एक साइकेट्रिक से डिप्लोमा कर लीजिए, फिर आप उसमें नर्सिंग काउंसलर बन सकते हैं, और उसके बाद आप जैसे कि रिसर्चर, जैसे मैंने बताया कि बीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग करके पीएचडी करके आप रिसर्चर बन सकते हो। हमारे बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है, तो ये बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर सकते हो और अपना नया नया मतलब डेवलपमेंट ला सकते हो, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में सर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ग्रोथ बहुत जरूरी है,
0: यानी अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी,
1: बहुत अपॉर्चुनिटी है सर।
0: अभी चल रहा है कार्यक्रम, पैरामेडिकल है पारस, हम कहते हैं कि फोन कीजिए, बातचीत कीजिए, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। इसके लिए हम अपना नंबर भी बताते हैं, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से डायरेक्ट बातचीत कीजिए, 9155558888 ये नंबर है, 9155558888 ये नंबर है, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। रश्मि जी से बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करें, इससे पहले आपको बताएं कि देखिए जॉब के लिए इंसान कहां से कहां चला जाता है, और अगर जो आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है ना तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। रश्मि जी जो है ना छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, हाँ, और देखिए छत्तीसगढ़ से पढ़ाई लिखाई करके आज श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में यहाँ अपनी सेवाएं दे रही है, यहाँ के युवा साथियों के साथ काम कर रही है। चलिए बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करते हैं कि यहाँ माहौल कैसा है इंस्टीट्यूशन का पढ़ाई के लिए?
1: सर यहाँ का माहौल मैंने देखा है कि लोग काफी रुझान अभी नर्सिंग के साइड पे हो रहा है, और इवन यहाँ का गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को लेके काफी अच्छा डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भविष्य में यहाँ पे बहुत सारे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, इसीलिए यहाँ के बच्चों का रुझान अभी नर्सिंग में बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से आपको नर्सिंग करने से बहुत सारे मतलब आगे करियर आपका बहुत अच्छा सेटल होगा।
0: अच्छा एक बात बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सपोर्ट है आपके, श्रीराज के एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सपोर्ट है बच्चों के साथ?
1: सर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे, आपको किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, यहाँ के बच्चे डायरेक्ट डायरेक्टर सर से जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि डायरेक्टर सर से मिलने के लिए हमें काफी लंबा वेटिंग में रहना पड़ता है, पर यहाँ बच्चे अपने प्रॉब्लम्स लेके सर के पास जाके और उनका सॉल्यूशन लेते हैं, और सर उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, इवन

0: इकोनॉमिकली भी सर काफी हेल्प करते हैं, ये चीज मैंने खुद देखा है।
1: अच्छा, चलते चलते एक सवाल, जो लोग प्लेन बीएससी करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट बायोलॉजी से कर लिया, अब बीएससी में बॉटनी या जूलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट से, या समटाइम्स आपने भी देखा होगा, एक लंबा करियर है आपका, कि साइंस के बच्चे या बच्चियां जो है छोड़ करके बीए में हिस्ट्री ऑनर्स ले लेते हैं या दूसरे स्ट्रीम में चले जाते हैं।
0: को किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, यहाँ के बच्चे डायरेक्ट डायरेक्टर सर से जाके अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि डायरेक्टर सर से मिलने के लिए हमें काफी लंबा वेटिंग में रहना पड़ता है, पर यहाँ बच्चे अपने प्रॉब्लम्स लेके सर के पास जाके और उनका सॉल्यूशन लेते हैं और सर उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, इवन इकोनॉमिकली भी सर काफी हेल्प करते हैं, ये चीज मैंने खुद देखा है।
1: अच्छा, चलते चलते एक सवाल, जो लोग प्लेन बीएससी करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट बायोलॉजी से कर लिया, अब बीएससी में बॉटनी या जूलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट से, या समटाइम्स आपने भी देखा होगा, एक लंबा करियर है आपका, कि साइंस के बच्चे या बच्चियां जो है छोड़ करके बीए में हिस्ट्री ऑनर्स ले लेते हैं या दूसरे स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहिएगा कि वो दूसरे जगह जाना अच्छा है या इस तरफ बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग करके इधर करियर बनाना अच्छा है?
0: इस बारे में सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि एक सबसे पहला तो लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड चुनो। लेकिन हेल्थ सेक्टर एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कभी भी जॉब के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा
1: जी।
0: तो सबसे पहला चीज तो इंसान पढ़ाई इसीलिए ही करता है कि अपना खुद का ग्रोथ करे और इकोनॉमिकली अपने पैरों पे खड़े हो सके। और हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। सो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ, आपने बहुत सारे ग्रेजुएट लोगों को देखा होगा जो ग्रेजुएट करके अपना, खासकर लड़के या तो छोटा मोटा कोई जॉब कर लेते हैं या तो लड़कियां शादी कर लेती है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में आप ये कभी नहीं देखोगे। आप हेल्थ सेक्टर में आ गए तो लोगों का माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है टीचरों के द्वारा कि आपको अपने पैर पे खड़े होना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और उसके अलावा यहाँ पे कभी भी जॉब की कमी होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अभी जंक फूड एनवायरमेंट कितना खराब है, तो लोग बीमार बहुत होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में भी आपको बहुत जॉब मिलेंगे और नर्सिंग कॉलेजेस, जैसे कि अभी आप बिहार में देख सकते हैं बहुत से नर्सिंग कॉलेजेस कंटिन्यू खुल रहे हैं, तो आपको एजुकेशन की दृष्टि से भी काफी अच्छा जॉब मिल सकता है। उसके अलावा आप काफी अच्छा मतलब रिसर्चर बन सकते हो, लोगों का सपना होता है कि मैं रिसर्च करूं, रिसर्चर बनूं, तो आप इस फील्ड में आके बहुत इजी वे पे रिसर्चर बन सकते हो, जो आपको किसी फील्ड में भी इतना इजी वे पे रिसर्च करने को नहीं मिलता है, वो चीज आपको नर्सिंग में मिलेगा।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आप छत्तीसगढ़ से आकर यहाँ श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पटना में काम कर रही हैं
0: जी।
1: आप ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं, पार्शियल नहीं, ओके, आप एकदम निर्णय सही देंगी, तो क्या आप ये कह सकती हैं दम से कि बच्चों का जीवन यहाँ सुरक्षित हो सकता है श्री राज में आकर?
0: जरूर सर, जरूर, इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ आई हूँ, क्योंकि यहाँ का इंस्टीट्यूट मैंने देखा है कि एक तो सर का खुद का हॉस्पिटल है तो हमको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, और उसके अलावा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी काफी अच्छा है। अभी तो हेल्थ का जो यूनिवर्सिटी है वो भी अलग हो चुका है, तो आप बहुत अच्छा ही एक्सपोजर है यहाँ पे, और श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका सब कुछ आपको एक ही कैंपस के अंदर अवेलेबल होगा, तो इसीलिए आपको कहीं भी और किसी भी चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं। आपको पास में ही जिस आपको हॉस्टल मिल जाएगा, जिस पेरेंट्स को लगता है कि मतलब बाहर बच्ची रहेगी तो कैसे रहेगी, तो उसके लिए आपको हॉस्टल का सुविधा है, आपको लाइब्रेरी का सुविधा है, आपको बुक, अगर आपके पास इकोनॉमिकली आप वीक हो तो आपको बुक बाहर से लेने की जरूरत नहीं, आपको लाइब्रेरी से सारे बुक मिल जाएंगे, और सबसे मेन डायरेक्टर सर का पूरा सपोर्ट रहता है, तो ये चीज बहुत।
1: हमने तो सुना है कि डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी एक गार्जियन की तरह पूरे बच्चों के साथ लगे रहते हैं।
0: जी सर, जी सर, वही जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप उनसे अपनी पूरी प्रॉब्लम पूरा सब कुछ शेयर कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी उनके उनके पास जाने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है बिल्कुल भी।
1: क्या आपने जहाँ से पढ़ाई की थी वहाँ ये व्यवस्था थी?
0: नो सर, बस यही ये वहाँ की सबसे बड़ी वीक पॉइंट थी कि हमको इवन प्रिंसिपल से मिलने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता था, और डायरेक्टर से तो मिलना, इवन वहाँ पे डायरेक्टर्स आते ही बहुत कम थे, महीने में एक बार कॉलेज विजिट करने आ गए तो बहुत बड़ी बात है ऐसा था, पर यहाँ पे हम डायरेक्टर सर से अपने जाके डायरेक्ट मिलते हैं और उनसे बातें रखते हैं, इवन हम फैकल्टी होके भी अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो चीज सर के सामने रखते हैं, और अगर कॉलेज में कोई इम्प्रूवमेंट की बात होती है तो हम उनसे बोलते हैं कि सर कॉलेज में इस चीज की कमी है तो आप ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, और सर हमारी पूरी बात एकदम अच्छे से सुनते हैं
1: और एग्जीक्यूट होता है,
0: बिल्कुल एग्जीक्यूट होता है।
1: थैंक यू रश्मि देवी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पैरामेडिकल है।

0: पारस में आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, जो गार्जियन सुन रहे हैं, जरूर रश्मि की बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, है ना? ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
1: थैंक यू सर।
0: चलने का समय हो गया, नंबर नोट करें 9155558888 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। आराम से 9162413233 ये नंबर है। और थैंक यू कहते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को, जिसने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। और श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पटना के बस स्टैंड रोड में है, जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। तो आप बात कर लें, आ जाएं, और सपोर्ट में खड़ा है बहुत ही किफायती दर पर श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल, आपको तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए। तो दोनों चीजें हैं। फिलहाल चलते हैं, करियर के बारे में सोचिएगा आराम से, टेंशन लिए बिना। हाँ, हंसते खेलते खूब खाइए, खूब मस्ती कीजिए। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: पारा मेडिकल है पारस। अभी आप यह प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, प्रस्तुत है गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं, समाहरणालय कैमूर के प्राप्त सूचना के अनुसार जिला उद्योग केंद्र कैमूर के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आज उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई और साथ ही एग्री स्टेट परियोजना के तहत किसान रजिस्ट्री अभियान को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जून 2026 तक विशेष शिविरों के माध्यम से प्रत्येक रैयत किसान का होगा पंजीकरण। कैमूर जिला प्रशासन द्वारा एग्रीटेक परियोजना के अंतर्गत किसान रजिस्ट्री अभियान को गति देने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। वहीं जिला जनसंपर्क कार्यालय रोहतास से प्राप्त सूचना के अनुसार सासाराम में 21 एवं 22 मई को शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य शेरशाह सूरी की ऐतिहासिक विरासत, प्रशासनिक कुशलता, सांस्कृतिक योगदान एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

कृपया एक बार पुनः फिर सुने। वहीं जिला जनसंपर्क कार्यालय रोहतास से प्राप्त सूचना के अनुसार सासाराम में 21 एवं 22 मई को शेरशाह सूरी महोत्सव का होगा आयोजन। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य शेरशाह सूरी की ऐतिहासिकता, विरासत, प्रशासनिक कुशलता, सांस्कृतिक योगदान एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुन लेते हैं एक गीत।

0: 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास संपन्न हुआ। FM बैंड के 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
5: और इस गीत के बाद

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वही ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में ग्रामीण एसपी के पद सृजन की मिली मंजूरी। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। और जनगणना में मकान सूचीकरण के तहत दर्ज गलत जानकारी को संशोधित किया जा सकता है। जनगणना निदेशक रंजीता ने साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। प्रमुख एजेंडों में गृह विभाग की आरक्षी शाखा के तहत राज्य के 5 और जिलों में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद को सृजन का निर्णय शामिल है। इन जिलों को अपराध और सांप्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील बताया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है।
1: गृह विभाग का एजेंडा था जिसमें 5 जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान में, जो कि अत्यंत संवेदनशील जिले हैं, इनमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के एक एक पद, कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए बताया कि 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
1: राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। पंचम वेतनमान वाले में 474% से बढ़ाकर 483% महंगाई भत्ता कर दिया गया। षष्ठम के मामले में 257% के स्थान पर 262% और सप्तम वेतनमान के मामले में 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। यह 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी।
0: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। श्री चौधरी ने बताया है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत महिलाओं समेत अन्य वर्गों को DBT के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
2: परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कुल 110 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा में

0: इधर प्रदेश की सरकार ने किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर गहराते ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत को लेकर ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत के पास 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार, 60 दिनों की एलएनजी तथा 45 दिनों का एलपीजी भंडार उपलब्ध है।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
2: मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या न्यूनतम करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मंत्रीगण निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों से बिना अतिरिक्त वाहनों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग का आग्रह किया है। राज्य सरकार के सभी विभागों को सरकारी बैठकों और कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सरकारी कैंटीनों में पाम ऑयल के कम इस्तेमाल, सरकारी एवं निजी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को बढ़ावा देने तथा सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील भी की गई है। आकाशवाणी समाचार से मैं निधिश्री।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रधानमंत्री की पहल को स्वागत योग्य और प्रशंसनीय बताते हुए कहा कि बचत की मानसिकता विकसित करना समय की आवश्यकता है।
3: प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ बातें सलाह या सुझाव के तौर पर देश के नागरिकों को दी है वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि प्रशंसनीय है। लगभग 25% विदेशी मुद्रा जो खर्च होती है सरकार की वो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर होती है, तो उन्होंने कहा है कि इसका खर्चा कम करिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का प्रदेश में आम लोगों ने स्वागत कर सहयोग करने की बात कही है।
4: मैं राहुल कुमार मधेपुरा से। वैश्विक संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए बयान का हम सभी समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से तेल, पेट्रोल और गैस में किल्लत हुआ है वो वैश्विक स्तर पर है और उसका हम सभी कैसे सहयोग करके भारत को इस संकट से बचा सकते हैं।
5: मैं सुरेश शेखर में शिवहर का निवासी हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आम जनता से अपील की है वह एक दूरदर्शी और सराहनीय पहल है। हम सभी नागरिकों को उनके इस सलाह का पालन करना चाहिए।
6: मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मान लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य की बात उन्होंने की, इसलिए वो जो कहे हैं एकदम सही कहे हैं और इसको हम लोग को मानना चाहिए।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
7: इधर आइए, इधर
8: इधर।
7: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
9: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
8: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
9: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसार

0: प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई इस परीक्षा में 88.86% छात्र और

0: प्रतिशत छात्राएं उत्तीर्ण हुई। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। जनगणना 2027 का पहला चरण 2 मई से 31 मई तक चलेगा। इसके अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि मकान सूचीकरण के तहत प्रगणक स्वगणना के दौरान दर्ज गलत जानकारी को संशोधित कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस बीच साइबर फ्रॉड को लेकर भी सतर्क रहने की अपील की।
1: कोई भी जनगणना कर्मी आपके घर आते हैं तो वो आपसे वित्तीय जानकारी या किसी प्रकार का दस्तावेज उसकी मांग नहीं करते। तो अगर कोई भी इस प्रकार का मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए संपर्क करता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है और साइबर हेल्पलाइन 1930 उस पर संपर्क कर सकते हैं या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1855 उस पर संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं या जिला प्रशासन स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में इसकी दर्ज करवा सकते हैं।
0: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 37,500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है।
2: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। राजधानी पटना, अररिया और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में कल ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून का आगमन निर्धारित समय से पहले होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व जिलों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चल सकती है, साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की भी संभावना है।
3: दिनांक 14 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सूरजमुखी बीज के MSP में सबसे अधिक 622 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कपास पर 557 रुपये, राम तिल पर 515 रुपये तथा तिल पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में कल देर रात STF और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अरवल जिले की अग्निशमन पदाधिकारी रश्मि की अध्यक्षता में 36 जगहों पर मॉक ड्रिल और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इस दौरान आग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीतामढ़ी

0: ने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर नेताओं और समर्थकों से मुलाकात की। श्री कुमार ने समर्थकों को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया। दरभंगा शहर के रामबाग किला घाट के पास आज सुबह चेन छिनते की घटना का विरोध कर रहे एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में ग्रामीण एसपी के पद सृजन की मिली मंजूरी। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। और जनगणना में मकान सूचीकरण के तहत दर्ज गलत जानकारी को संशोधित किया जा सकता है। जनगणना निदेशक रंजीता ने साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया टोपी।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
1: औरंगाबाद जिले के बड़े भूभाग को सिंचित करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन उत्तर कोयल नहर परियोजना के काम में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत प्रत्येक सप्ताह जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अलावा निर्माण कंपनी के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उत्तर कोयल नहर परियोजना झारखंड से प्रारंभ होकर जिले के नबीनगर, कुटुम्बा, देव, मदनपुर और औरंगाबाद प्रखंडों से होकर गया जिले में प्रवेश करती है। परियोजना कार्य पूरा होने से 1,11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसका अधिकांश हिस्सा बिहार में है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने उत्तर कोयल नहर के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और किसानों के हित में इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने उत्तर कोयल नहर परियोजना के कार्यों में तेजी आने पर प्रसन्नता जाहिर की है और कहा है कि इस परियोजना के पूरा होने से औरंगाबाद तथा गया जिले के असिंचित इलाके में खुशहाली आएगी। भारत की जनगणना 2027 का कार्य जिले में सुचारू रूप से चल रहा है। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा जनगणना कार्य की लगातार समीक्षा कर रही हैं। इसके तहत 2 मई से जिले में हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य चल रहा है। इस कार्य में जिले के लगभग 5,031 प्रगणक सक्रिय रूप से अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। मकान का चिन्हांकन और सूचीकरण का कार्य 31 मई तक चलेगा। जिलाधिकारी ने जनगणना कार्य में जिलेवासियों से सहयोग करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर औरंगाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह, पार्टी के महामंत्री सतीश कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह ने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री

0: प्राथमिकता है। 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इसमें 2015 मामलों का निस्तारण किया गया, 5 करोड़ से अधिक का समझौता भी किया गया। जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने कहा कि सफलता की एकमात्र पूंजी कठिन परिश्रम और ईमानदारी है। भारतीय रेल और एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम भारतीय रेल बिजली कंपनी की नवी नगर स्थित परियोजना के विस्तार की पहल की गई है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक रंजन देहुरी ने बताया कि यहां 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की एक इकाई स्थापित किए जाने को लेकर प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना विस्तार से भारतीय रेल बिजली कंपनी की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 1800 मेगावाट हो जाएगी। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, रेड क्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रवि रंजन ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान जीवन दान के समान है। एनटीपीसी लिमिटेड की नवी नगर परियोजना में इस वर्ष आयोजित होने वाले बालिका सशक्तिकरण अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक एल के बेहरा ने बताया कि अभियान के तहत 60 बालिकाओं का चयन कर 12वीं कक्षा तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मदनपुर में पत्तल निर्माण उद्योग की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन नाबार्ड के उप महाप्रबंधक सुशील कुमार सिंह और जिला विकास प्रबंधक कृष्ण कुमार ओझा ने संयुक्त रूप से किया।
1: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू करने की अधिसूचना जारी।
3: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ज पर। लीजिए सुनिए फोन इन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज का फोरिन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है, चलिए देखते हैं पहला कॉल हमारे किन श्रोता की है। हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद।
0: हाँ
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: होंगा से बोल रहे हैं, डेहरी वंशम पश्चिम टोला। हरिहर प्रजापति नाम है मेरा।
0: हरिहर प्रजापति
1: जी? जी।
0: अच्छा बोलिए हरिहर जी, क्या हालचाल?
1: ठीक है ठीक है सर, हमको गाना सुना दीजिए।
0: हाँ कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: कुर्बान फिल्म को गाना सुना दीजिए। गाना का बोल है ये धरती चांद सितारे नदिया पवन घटारे।
0: हाँ ये बहुत अच्छा गाना है, तो चलिए हरिहर जी हम आपको सुनवा रहे हैं कुर्बान फिल्म का ये गाना।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद, नमस्कार
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं सासाराम मोहल्ला मोगलपुरा से सुहेल अंजुम बात कर रहा हूँ सर।
0: सासाराम मोगलपुरा से बोल रहे हैं सुहेल अंजुम जी, क्या हालचाल है?
1: ठीक है सर, अपना बताइए।
0: यहाँ भी सब ठीक ठाक है। क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: जी आज फिल्म ही लगा गाना सुना दी मोहम्मद रफी की आवाज में, तेरे टूटे में तेरा दीवाना आज दिल खो गया।
0: हीर रांझा का फिल्म
1: जी, राजकुमार वाली, तेरे खुशे में तेरा दीवाना आज दिल खो गया।
0: ठीक है, आपकी बहुत ही अच्छी पसंद है, तो चलिए हम आपको सुना रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत, सुनिए आप सब अपने परिवार के साथ।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर।
0: जी गिरेंद्र जी, क्या हाल चाल है? यहाँ
1: ठीक
0: भी सब ठीक ठाक है। बोलिए, मौसम का क्या हाल चाल है?
1: लाल बहादुर जी से बात हो रहा है
0: जी जी
1: जी। बहुत खुशी हुई सर, बहुत दिनों में बात हो रहा है।
0: जी धन्यवाद। आपके यहाँ मौसम का कैसा मिजाज है?
1: बारिश हो गया था पर अब सुधार है, मौसम साफ है और धूप भी निकल गया। हम
0: और वीरेंद्र भाई क्या करते हैं?
1: किसान हैं सर, खेती बाड़ी से जुड़े हुए, पर अभी तो खेत खाली है, बैठे हुए हैं।
0: अभी कोई फसल लगा हुआ है?
1: जी हाँ सर, अभी खेत खाली है, मानसून होने के बाद खरीफ का फसल, धान का फसल
0: अच्छा, धान का
1: लगाएंगे।
0: बिचड़ा वगैरह डलाएगा।
1: जी जी सर,
0: जी तो चलिए, आपका तो पसंद, आपकी कार्यक्रम में भी चिट्ठी आती है। हाँ,
1: आप हमको बहुत ध्यान
0: आप तो
1: रखते
0: हमारे,
1: हैं, सब भी शामिल करते हैं सर, धन्यवाद सर।
0: हाँ, बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो वीरेंद्र भाई, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: करण अर्जुन

0: गाना है और गाने का बोला है सूरज कर देर गिरन।
1: आपको ये गाना क्यों अच्छा लगता है?
0: यहाँ सर काफी अच्छा लगता है, देखे भी है, कई बार फरमाइश की है, गाना सुना है,
1: गाना तो अच्छा है ही। तो चलिए गिरिंदर भाई, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर यही गाना।

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं जयराम बिंद चौसा गोला बक्सर से बोल रहा
0: ओ
1: हूँ।
0: जयराम बिंद भाई, क्या हाल चाल? हाँ
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है। आपका सर?
0: यहाँ भी सब ठीक ठाक है। आप नियमित रूप से रेडियो सुनते हैं?
1: हम तो नियमित रूप से सुनते हैं, ज्यादा दिन हो गया सुनते हुए, अच्छा लगता है।
0: चलिए शुक्रिया। तो आज कल क्या हो रहा है?
1: अभी तो धूप है, आंधी तूफान आते जाते रहता, भी बैठे हैं घर पे।
0: ठीक है, खेती बाड़ी में क्या चल रहा है? अच्छा,
1: खेती बाड़ी तो सब खत्म हो गया, गेहूं कट गया सब।
0: अब धान की तैयारी होगी।
1: अब तो धान की तैयारी होगी,
0: चलिए।
1: उन्हीं से

0: आप थोड़ा कर लीजिए, काजल बेटी से मेरा।
1: ठीक है, करवाइए।
2: हेलो।
1: हेलो काजल जी, क्या हालचाल है?
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, क्या करती हैं?
2: बस यही बैठी थी, है पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई।
1: हाँ, किस क्लास में अभी हैं काजल जी?
2: अभी तो हम नवी कक्षा में
1: हैं। नवी कक्षा में है, पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है ना?
2: हाँ, अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है।
1: अच्छा, छुट्टी चल रही है तो चलिए मन लगाकर पढ़िए। आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं काजल जी?
2: घर द्वार फिल्म का गाना।
1: घर द्वार फिल्म का नाम। हाँ, कौन सा गीत?
2: स्वर्ग से सुंदर सपनों से अच्छा है मेरा घर द्वार, बस यही गाना सुनने का मन था।
1: चलिए, बहुत अच्छी पसंद है। तो काजल जी अपने पापा के साथ सुनिए यही गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: विजय बैठा गांव बिलारी।
0: कौन जिला में पड़ता है?
1: ये रोहतासी जिला में है, आपके रेडियो स्टेशन से 14 किलोमीटर पर साइड में पड़ी।
0: अच्छा अच्छा,
1: सही के दावा क्यों बोलता नहीं?
0: मेरा नाम लाल बहादुर सिंह हुआ है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, लाल बहादुर जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो आप आकाशवाणी सासाराम सुनते हैं?
1: जी आकाशवाणी सासाराम तो बहुत दिन से सुनता नहीं हम। विकास के सोपान काबिले तारीफ लगेला, बहुत अच्छा लगेला।
0: विकास के सोपान कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: ये साप्ताहिक कार्यक्रम सब सुनते हैं, बाकी सब सुनते हैं। और इसके बाद सारे कार्यक्रम जितने भी हैं, जैसे किसान वाड़ी घर आंगन गंदनी एक कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है
0: जी।
1: बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत सुंदर, बहुत ऐसा तालमेल बैठा है आप लोग की, इधर 5 बजे बंधन और उधर रात में बंधनी।
0: चलिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। आज सर, क्या सुनना चाहते हैं विजय जी?
1: तो हमको सुना दीजिए सर, नूरी फिल्म का गीत, आ जा रहे हो मेरे दिलवर आ जा।
0: अरे नूरी फिल्म का नाम है
1: जी।
0: कौन सा गीत?
1: आ जा रहे हो मेरे दिलवर आ जा, दिल के पास वो आ जा रहे।
0: जी बहुत ही अच्छा गीत है, आपकी पसंद काबिले तारीफ है। तो चलिए विजय जी, हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार सर, शायद ललन जी बोल रहे हैं, ललन मिश्रा जी।
1: जी सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं नरहम स्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा बोल रहा हूँ सर।
0: जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब सुनाइए, क्या हालचाल है?
1: जी सर हालचाल तो ठीक है, बस मौसम जो है तो कभी सर्द का मौसम ले आता है, कभी गर्मी का। जी
0: मैंने
1: आत्मिचौली
0: कर रहा है।
1: पेश किया था सुबह में
0: जी,
1: क्या कहते हैं गीत मालिका में, धूप पर ही आधारित था, अच्छा लगा हमको भी, बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी कल के प्रोग्राम में। तो ललन जी, आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और नियमित श्रोता हैं और बहुत ही बारीकी से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: सर अभी चूंकि शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और एक गीत है जो आपके केंद्र में वो गीत नहीं है, फिर भी मैं उसकी फरमाइश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि कहीं न कहीं से ढूंढ के आप

0: मैं हमें सुना ही देंगे।
1: जी, कौन सा गीत?
0: वो गीत है सर अनोखी रात सिंह का एक गीत है, लता जी की आवाज
1: जी।
0: खुशी खुशी कर दे विदा की रानी बेटी राज करे।
1: जी जी, बहुत ही
0: मार्मिक, बहुत ही मार्मिक गाना।
1: आपने बहुत ही समय अनुकूल गीत चुना है, शादी ब्याह का मौसम भी चल रहा है।
0: जी
1: ललन जी, हम आपको सुना रहे हैं आपकी ही पसंद पर ये गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कश्मीर से लतीफ
0: अच्छा, कश्मीर से बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं?
1: अहमद रैना।
0: हाँ लतीफ भाई, इधर तो काफी गर्मी है, आप तो कश्मीर में रहते हैं, थोड़ा ठंडक भेजिए इधर भी।
1: कश्मीर में कूलर की जरूरत नहीं है।
0: जी, आप बहुत खुश नसीब है कि आप ऐसे जगह पर रहते हैं लतीफ
1: हाँ, यहाँ
0: भाई।
1: पे इतना ठंडी हवाएं चलती है अभी,
0: हाँ,
1: जैसा वहां कूलर की हवाएं चलती है ऐसा हवाएं चलता है।
0: मैंने हमेशा मौसम खुशनुमा बना रहता है। क्या
1: हाँ, सुबह शाम दिन भर
0: करते हैं लतीफ भाई?
1: बस खेती बाड़ी और बागवानी।
0: कश्मीर में कौन सी खेती होती है? अच्छा,
1: ज्यादा तो ये मक्का और धान।
0: धान और मक्का कश्मीर में होता है। अच्छा
1: हाँ वो होता है, मगर एक ही फसल आता है एक साल में।
0: अच्छा
1: यहाँ पे मौसम ठीक मत रहता है, यहाँ बर्फबारी होता है
0: हाँ हाँ
1: उसी वजह से। आज
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: मन फिल्म का सुना है,
0: मन फिल्म का कौन सा गीत?
1: कोई भी चलाए उसमें तो सभी गाने अच्छे हैं।
0: तो चलिए लतीफ भाई, हम आपको सुना रहे हैं आपकी ही पसंद पर ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: जी नमस्ते सर।
0: हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम लालगंज से अरविंद बोल रहे हैं सर। जी
0: लालगंज से अरविंद जी बोल रहे हैं,
1: सर। ठीक
0: क्या हालचाल है?
1: है सर, अपना हालचाल बताइए। इलेक्ट्रिक
0: बस यहाँ भी सब ठीक ठाक है। क्या करते हैं?
1: का काम करते हैं सर।
0: मैंने इलेक्ट्रिक या मिस्त्री का काम करते हैं या दुकान है?
1: दुकान है सर, इलेक्ट्रिक का काम भी करते हैं, दुकान भी है सर।
0: चलिए अच्छी बात है। आकाशवाणी सासाराम के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं और सुनते हैं?
1: गांव घर, घर आंगन, यू वाड़ी, किसान वाड़ी, सब अच्छा लगता है सर, सुनते
0: चलिए
1: हैं।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और
0: और
1: एक गाना सुनना था सर,
0: हाँ जी सुनवाएंगे जरूर।
1: खुदगर्ज फिल्म का, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी।
0: जी, ये तो सही बात है। तो चलिए अरविंद जी, हम आपको सुना रहे हैं

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संजय जी मेरा नाम है।
0: संजय जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम औरंगाबाद नवीनगर प्रखंड मझियाव गांव से बोल रहे हैं।
0: जी मझियाव नवीनगर औरंगाबाद से बोल रहे हैं।
1: जी सर।
0: आपका कॉल पहली बार लगा है क्या?
1: बार और लगा था।
0: अच्छा ठीक है, आप क्या करते हैं?
1: किसान
0: है। किसान है, कौन सी खेती लगी हुई है अभी?
1: धान गेहूँ होता है, आलू भी होता है।
0: तो गेहूँ तो कटनी दौनी तो हो गया होगा गेहूँ का।
1: हाँ।
0: धान की तैयारी चल रही होगी।
1: अभी तो कोई काम नहीं है, खेत में लगा हुआ है।
0: अच्छा, आपके यहाँ और सब मौसम का क्या हाल है?
1: और सब मौसम सब कभी कभी बादल कर रहा है, कभी कभी धूप भी हो रहा है।
0: अच्छा,
1: हवा भी चलता है कभी कभी।
0: तो चलिए संजय जी, हमारे आकाशवाणी सासाराम के और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: सबसे अच्छा प्रोग्राम तो हमको हेलो मनपसंद ही लगता है सर, और मैसेज के बहाने है। और
0: ये तो सब फिल्मी गाने का प्रोग्राम है, और इसके अलावा भी हमारे केंद्र से कई कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जैसे किसान वाणी, घर आंगन, युवाणी, ये सब सुनते हैं?
1: हाँ सर सुनते हैं।
0: सुबह में हमारा कार्यक्रम होता है नमस्ते रोहतास। चलिए शुक्रिया संजय जी, आज क्या सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: सर गाना सुनाना है तो फिर एक नदिया का पार गाना है, पवन दिशा में लेके चला रहे बतौरिया,
0: बहुत ही सदाबहार नगमा है।
1: जी सर।
0: तो चलिए हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये गीत।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: इस गाने के साथ ही कार्यक्रम हेलो मनपसंद अब समाप्त होता है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शनिवार संध्या 7:50 पर। श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो मनपसंद के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं हर बुधवार दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए आप हमें हमारे इस फोन नंबर पर रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0618422110। श्रोताओं से एक आग्रह कि जिन श्रोताओं का कॉल आज शामिल हुआ है वे कृपया अगली बार कॉल ना करें ताकि हमारे दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिल सके। अब दीजिए इजाजत।
1: अभी आप फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे हेलो मनपसंद। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री

0: तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और

0: में आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुर सौरभ के अंतर्गत प्रस्तुत है पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। इनके साथ तबले पर संगत की हैं अनिंदो चटर्जी ने। आइए इनसे सुनते हैं राग देश में कुछ रचनाएं।

सुर सौरभ के अंतर्गत अभी आप पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन सुन रहे थे। एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में विविध भारती मुंबई से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

0: आदत से मजबूर।
1: बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था।

बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं। पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

अबू धाबी से भारत आकर बिनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बिनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बिनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी उनकी आवाज को एक मौका भी नहीं दे रहा था। बेनी जगह जगह जाते और कम से कम कोरस में ही गाना गाने देने की गुजारिश करते, लेकिन कुछ हासिल न होता। इस दौर में एक म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी आवाज गायक बनने लायक नहीं है और वो कभी भी एक गायक नहीं बन सकते। संघर्ष के इन दिनों में जीवन में हर ओर से मुसीबतें बरस रही थीं।

बेनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें इस तरह से लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, ये वो समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने बीपीओ में एचआर की नौकरी कर ली।

इधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान का।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी, लेकिन ए.आर. रहमान के पास नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ए.आर. रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी, और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए आर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे, और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

रहमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

बेनी दयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो बेनी दयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज़ सीधे दिलों को छूती है।

बीनी दयाल एक अच्छे गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उनके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

बीनी दयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं।

बेनी दयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचा कर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनी दयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसकी गवाह तो

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो A.R. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

बिनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपने जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं, देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और अपने

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही कह उठेंगे।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। रस रंग के तहत प्रस्तुत है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, अभी आप हिंदी एल्बम सॉन्ग सुन रहे हैं।

हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं कहते हैं, प्रिय लोगों से मिलना अमृत समान होता है। अमृतम प्रिय दर्शनम। बहारों के मौसम में जहां फूल ही फूल खिले हो, पौधे हिलोरे ले रहे हों, यह नजारा भी किसी अमृत से कम नहीं होता।

अभी आप चित्रपट तराने कार्यक्रम में फिल्म संगीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एक नजर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

प्रातःकालीन प्रसारण में नमस्ते रोहतास सुनिएगा 7:30 पर और 8:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम पसंद आपकी।

पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनिएगा 8:45 पर और 9:10 पर सुनिएगा गीत मालिका।

साहित्यिक कार्यक्रम में आप सुनेंगे 10:05 पर और संध्याकालीन प्रसारण में शाम 6 बजे सुनिएगा किसान वाणी।

अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। कल का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा हवा में नमी 45% हो सकती है। आमतौर पर मौसम शुष्क और साफ रहेगी।

यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन

0: से। तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnav said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also